मेल मलाया, तिन्ही किया वजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख हो उठे रोग पाप कमाया, हरख हो सोग वजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया, सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सो होग ना चले चलाया, श्लोक महला पहला, कूड़ बोल मुरदार खाई, अवरी नो समझावन जा।

आखिया जिस लभ लोभ अहंकारा नाओ पढ़िया नाओ बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती परे भंडारा निर्मल नाम मन्निया गर सच्चै सचियारा।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माही निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम निवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खाने ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां हो वह तीनवा सोम हो वह दुध कीयो सगली धरती सक्कर हो वह खुशी करे नित जीयो।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआउ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाउ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

खसम पठाया, तबल बाज बीचार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताखती। सलोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवाड़ सन की सारा चिथिया। कान लया तन झाड़, दोए पुड़ चत

काला क्या करी, खुसरे क्या कारवास, कुत्ते चंदन लाइए पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाइए पढ़िए है सिमरत पाठ, अंधा चानन रखिए दीवे बल है पचास, चौने सोयना पाइए चुन चुन खावे कास, लोहा मारन पाइए कह ना हुए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश, महला पहला कहां कंचन टुटे सार, अग्नि गंड पाए लोहार, गोरी सेती टुटे पतार, पुत्ती गंड पवे संसार, राजा मंगे दिते गंड पाई, भुखियां गंड पवे जा खाए, काला गंड नदियां मीह झोल, गंड प्रीति मिठे बोल, वेदां गंड बोले सच कोए, मोया गंड नेकी सत होए, एत गंड वरते संसार, मूर्ख गंड पवे मोह मार, नानक आखै एहो बीचार, सिफती गंड पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे बीचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार, खरे खजाने पाई है खोटे सच्ची है बाहर वार, खोटे सच्ची दरगाह सुती है किसे आगे करह पुकार, सतगुर पिछे भज पवे है एहा करनी सार, सतगुर खोट्यो हो खरे करे शब्द सवार नहार, सच्ची दरगाह मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करी जो आप

मेर अवध बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, हस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला, ना दादे देहां दे आदमी, ना सपत जेर जिमी, हस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई, एक तुई महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, हस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रहा जर, दरख्त आब आस कर, देहां दिसुई, एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया।

गुरमुख जानिया, गुरमती आप गवाए सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया, मनमुख सदा कूड़ियार परम फलाणिया, विष्ठा अंदर वास साधना जानिया, बिन नावे दुख पाए आमन जानिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला, सिंहा बाजा चरगा।

सारे कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम त्याई है, दूजी कार लाग जन्म गवाई है, बिन नावे सब विस पेंजे खाई है, सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाई है, सलोक महला पहला, तुद भावे ता वावे गावे, तुद भावे जल नावे, जा तुद भावे

बोल बोल बेख खाया चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अन दिन नाम त्याया दासन दास होए कै जिन्नी विचों आप गवाया ओना खसमे कै दर मुख उजले सच्चै शब्द सुहाया सलोक महला पहला सबाही सालाह जिनी त्याया इक मन से पूरे साह वक्त है उपर लड़ मोए दूजे बहुते राह मन किया मती खिंदियां बहुत पए असगाह गोते खाहे ना निकलह तीजे मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकियां खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती।

काबूल। नानक पूरा जे करे कटै नाही तोल। पौड़ी जा तू ता क्या होर, मैं सच सुनाई है। मुठी तंदे चोर महल ना पाई है। इन्हें चित कठोर सेव गवाई है। जित घट सच ना पाए सो भन कढ़ाई है। क्यों कर पूरे वट तोल तोलाई है। कोई ना आखै घट हों मैं जाई है। लइयन खरे परख दर भी नाई है। सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है। सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड। नावा खंड शरीर तिस विच नौ निद नाम एक। पाल है गुणी गहीर। कर्म

ताबास बोलन फादल नानका दुख सुख खसमै पास महला दूजा पौन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिन सरात दोई दाई दाया खिलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल पौड़ी सच्चा भोजन पाओ सतगुर दस्या सच्चे ही पतियाए सच विगस्या सच्चे कोट गराए निज घर वस्या सतगुर तुठै नाउ प्रेम रहस्या सच्चे दै दी बाण कूड़ ना जाइए झूठो झूठ बखान सो महल खवाइए सच्चे शब्द निशान ठाक ना पाइए सच सुन बुझ बखान महल बुलाइए सलोक महला पहला पहरा अगन हिवै कर बाधा भोजन सार कराई सगले दुख पानी कर पीवा धरती हाक चलाई तरत राजी अंबर तोली पिछे टंक चढ़ाई एवड वड्डा मावा नाही सब सह नत चलाई एता तान होवै मन अंदर करी पे आख कराई जेवड साहेब तेवड दाती दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिसे ऊपर

प्यार मन वसाइए मोहत ना चसा विलम भरिए पाइए गुर प्रसादी बुज सच समाइए सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस हंडन कर्मा बाहरी महला पहला।

आपण देखू चाया पे लाए, हुक्म पया तुर खसम का, अती हूं टका खाए। गुरमुख स्यों मन मुख अड़े, डुबे हक न्याय। दुहां सिरियां आपे खसम, वेखे कर व्यपाय। नानक एवै जानिए, सब किस तिसहर जाय। महला दूजा, नानक

मूल जान गल्लां करे हान लाए हान लब ना चली सच रह सो विष्ट परवान सर संदे आगास को क्यों पहुंचे बाण अगे ओ अगम है वाहे दर्जान पौड़ी नारी पुरख प्यार प्रेम शिंगारिया करन भगत दिन रात न रहनी वारिया महला मांजनवास शब्द सवारिया सच कहन अरदास सेवे चारिया सोहन कसम पास हुक्म सिधारिया सखी कहन अरदास मनो प्यारिया बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीविया शब्द सवारी आस अमृत पीविया।

तृप्तिया सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की कीती पुछा पुछ महला दूजा नेह पलंग तस जन्मस

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलान कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल वधौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास।

नानक बख्शे बख्शी है नाहे ता पाही पाहे महला पहला। नानक बोलन चखना दुख छड मंगी है सुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहर है जाए मनुख जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप पौड़ी। चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरख अलख सिरज निहालिया उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया पाया रत्न कराह दीवा बालिया सच्चा शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया नाउह भुला जग फिरे बेतालिया। सलोक महला तीजा पै विच जमै पै मरे पी पौ मन मह होए नानक पै विच जे मरे सहला आया सोए। महला तीजा पै विण जीवै बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पै विण जे मरे मुहे काले उठ जाए। पौड़ी सतगुरु हुए दयाल ता शरदा पूरी है सतगुरु हुए दयाल ना कबहू चूरी है सतगुरु हुए दयाल ता दुख ना जानी है।

नित सुरही सा तन दही बलोवै इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नातै जित वडे आई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक ता पत जानी है जा पत रखै सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा भी बाण हो रिया मन जानिया सच जे मंगह दान से तुदै जेहया सच तेरा फरमान शब्दे सोहया।

चढ़े सुआया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। सलोक महला दूजा, दीख्या आख बुझाया, सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है। जिन गुर नानक देव महला पहला, आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे। कह कह कतन

कसम बुलाया, सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम पूजन आया, गुरमति खादा राज तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया, शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला, चौपदे दुपदे

पै पौ राख्या भाई सवार रहाउ, पै तन अगन पखै पै नाल, पै पौ कड़िय शब्द सवार, पै बिन काड़त कच न कच, अंधा सच्चा अंधी सट, बुद्धि बाजी उपजै चाऊ, सहस सियाणप पवै ना ताऊ, नानक मनमुख बोलन वाऊ, अंधा अखर वाऊ दुआऊ, गौड़ी महला पहला।

तत तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊं आप।

मन खोट साचे गुरु की साची सीख तन मन सीतल साच परीख जल पुराण रस कमल परीख शब्द रत्ते मीठे रस ईख हुक्म संजोगी।

नाम हृदय अमृत मुख नाम, नर हर नाम नर हर ने काम, रहाउ सहजी आवे सहजी जाई, मन ते उपजे मन माही समाई, गुरमुख मुख तो बंद ना पाई, शब्द विचार छुटे हर नाई, तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, सांझ बिहाग तकह आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास, नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्ये पूरे हर लोग, मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए, गौड़ी महला पहला, काम क्रोध मा

बोले पढ़वाओ जेवा इंद्री एक सुवाओ दिष्ट वकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया मन दो।

मन माने अमृत रस पीजे रहाउ जन्म जीत मरण मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कर करते जानिया जत सत।

नानक गुरमत सहज सुमाउ गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई मरण रहन रस अंतर पाई गर्भ निवार गगन पुर पाई मरण लिखाए आए नहीं रहना हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ सतगुर मिले तदुबदा भागे कमल बगास मन हर प्रभ लागे जीवत मरे महारस आगे सतगुर मिले सच संयम सूचा गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा कर्म मिले जम

गुर बचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुपाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांधे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जाके हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माहि निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लाभ लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे भारू, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों धारू परिशारु, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ न आवे वारी रहाउ, हौ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करह पराई, झूठी लाए तिबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करह चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जा किश लिया, ता मन भला पाया, हलत ना सोबा पलत ना ढोई, अहला

सब किस चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दे दे नीम दवाल उसारी पस मंदर की ढेरी संचे संचना दे किस ही।

भोग तिस का पाना रहाउ साहु हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बनजारी जियो पिंड सब रास तिस की मारे आपे जी वाले गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना।

रखी सातना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

लब लोभ की ताविसता, जपस निरंजन रचस मना, काहे बोलह जोगी कपट कना रहाव, काया कमली हंस एयाणा, मेरी मेरी करत बिहानीता, प्रणवत नानक नांगी दाजै, फिर पाछै पछतानीता, गौड़ी चेती महला पहला, औखद मंत्र मूल मन एक है, जे कर दृढ़ चित की जैरे, जन्म जन्म के पाप कर्म के, काटन हारा ली जैरे, मन एको साहिब पाई रे, तेरे तीन गुणा संसार समाव है, अलख ना लखना जाई रे रहाओ, सक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पांड उचाई रे, रात अनेरी सूजस नाही, लाज टूकस मूसा पाई रे, मन

केते पशु अपाई, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहां छपावे, तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी तोलन लागा, घट ही मह वणजारा।

आ धन धरनी धरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ हो।

गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन वसा कंद मूल चुन खाऊ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार राम की

हर मेरा सहुवस है हौ मिलोंगी बाहा पसार। नागन होआ धर वसा शब्द वसै पहु जाए, नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्बी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का हुए बिचार, तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहार। तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला, हौ वारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखे गा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे इस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होए साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा।

शब्द पछाण सतगुर कै पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कै सच रंग सुमाई रहाऊ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

वै जो पांडा हुए ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी गुवारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ। एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करहै मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाउ। गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जीवा लनहारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवै आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन विहाना हिरदय राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ। गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए तावत वर्जे ठाक रहाई।

तू अकथ क्यों कथिया जाय, गुर शब्द मारन मन माहि समाहि, तेरे गुण अनेक कीमत नह पाहि, जिसकी

ते बूझै जन कोई रहाउ। असंत अनारी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस काल

राम जप हो पवजल उत्तर हो पार रहाव परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाय मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निध पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

गुरमत विरला बूझै कोई, नानक नाम समावै सोई। गौड़ी गवार री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई। पूरा जनकार कमावै कोई, अखोट नाम धन हर तोट ना होई। ऐथे सदा सुख डर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै। गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेव है से महापुरख संसारे। आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रख है उर तारे। नाम रखते पौजल उतरह पारे, सतगुर सेव है सदा मन दासा। हम मैं मार कमल परगासा, अनहद वाजै निज करवासा। नाम रखते कर माहे उदासा, सतगुर सेव है इनकी सच्ची बाणी। जुग जुग भगती आख बखाणी, अन दिन जप है हर सारंग पाणी। नानक नाम रते निह केवल निर्वाणी। गौड़ी गुआर री महला तीजा, सतगुर मिले वडभाग संयोग। हिरदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए। जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान।

बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मध्य पानी नाही जैसे धरती मध्य पानी परगासिया बिन पगा वरसत फराही बाबा तू ऐसे परम चुकाही।

तुझही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही।

महला तीजा सब जग काल बस है बांदा दूजे पाई हमे कर्म कमावंदी मन मुख मिले सुजाई मेरे मन गुरचरणी चित लाए गुरमुख नाम निदान लै दरगाह लै छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन हठिया वै जाए गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए अन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हम मैं तजे विकार जन नानक करमी पाईन हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पेयड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया देव कड़ै गुण संभलै सोहरे वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससुरह पेयै पिर वसै कहो कित बिद पाईऐ आप निरंजन अलख है आपे मेलाइए रहाओ आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आईऐ वडभागी सतगुर मिले मुख अमृत पाईऐ हमे दुबदा बिर सजाए सहजे सुख समाईऐ सब आपे आप वरतदा आपे नाए लाईऐ मन मुख गर्भ ना पायो अज्ञान ज्ञानी सतगुर सेवा ना करह फिर पछताणी गर्भ जूनी वास पाए दे गर्भे गल जानी मेरे करते एवं पावदा मन मुख परमाणी मेरा हर प्रभ लेख लखाया तुर मस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंदप बीरा हर हर बख्श मलाए प्रभु जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बीचारा मत मलीन प्रगट पई जप नाम मरारा शिव सकत मटाईया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईऐ संत जन हो जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मेले हो हर रस पीवा रहाओ हौ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है हम अवगण यारे पापी पाथर डूब दे गुरमत हर तारी तू गुण दाता निर्मला हम अवगण यारी हर शरणागत राख लेहो मूड मुगद निस्तारी सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी गुआर री महला चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज मन मेरे तर भौजल तू तारी रहाओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी।

कथा है हर की, पाज मिल साधु संगत जन की, तर पौ जल कथ कथा सुन हर की। गोबिंद सत संगत में लाई, हर रस रसना राम गुण गाय। रहाउ जो जन त्यावहि हर हर नामा, तिन दासन दास करहु हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे, सो जन हमरे मन चित पावे। जन पग रेन वड भागी पावे, संत जना स्यों प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखी।

जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाते जन नानक प्रीत साध पग चाटे।

अनखाय गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाय हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखै माए गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी ग्वार री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कनी गुर सिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ त्यागे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी ग्वार री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहया बनवारी हर आपे तप तापै लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत तारा हर अमृत आप पिया मनहारा।

बणंजह रंग सिउ जे आप दयाल हुए देह हम बणजारे राम के हर वणज करावे देरा सरे रहाउ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर बणज सो जन करे

त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिख संचय हटवानिया बह हाथ कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए एह माया मोह कटंब है।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम सुमाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नर

था। हमरे मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्स तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरे मन चित हर बहुत प्यारा, हौ कुर्बानी गुरे अपनी, जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजना।

बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे।

चौथा कंचन नारी मह जियो लुभत है मोह मीठा माया कर मंदर घोड़े खुशी मन अन रस लाया।

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हौ कर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख दे ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओहरा खै चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जान हो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर लय छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले

मन हुए आनंद सो सतगुरु कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुरु प्यारा कित बिद मिले हौ खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाउ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुरु तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुरु मिलिए टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरै हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभु कीनी मेरा मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभु की हौ गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब ज्योत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरपूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते जन नानक नाम लए ता जीवै हर जपिए हर कृपाते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो कृपा जग जीवन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाउ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजे मन निरत करे कर नाचे आपे साहा वड्डे प्रभ स्वामी हम बन जा रे है ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वे महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन एक बिनो सुनो दे काने जिस ते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राने राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहाओ जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया ते साकत मूड देवानी तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने
जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगानी जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समानी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी कहो कितै हर पहु नसीऐ हर आपे बख्श लए प्रभ साचा हर आप छुड़ाए छुटिऐ मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिऐ रहाव मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्ब सुख दाता जित सेवै निज कर वसीऐ गुरमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसीऐ मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लै लाहा हर मन हसीऐ हर हर आप दया कर देवै ताय अमृत हर रस चखीऐ मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे ते साकत नर जम कुटिऐ।

नरहर जित सेवय लेखा छुटिया जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिया गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिल आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम जप

अन दिन अन दया वड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यों पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कशु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाडी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूरब लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाओ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभे दुख पावे है जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख

हर यज्ञ में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सत गुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा ने ही अरे, तिन आगह आन परीठा, मन मुख ही अरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निकस फोल फलीठा, हर प्रभ आन मलाव गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा, गौड़ी पूर्वी महला चौथा।

मुख मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियारै दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी। हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया वे आवह जाहे अभागी। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी। जन नानक की लाज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिले आप गवाया। हम मैं रोग गया सुख पाया तन तन गुरु हर राया। राम गुर कै बचन हर पाया रहाउ। मेरा ही अरे प्रीत राम राय की गुर मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगै जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदय नाल दिखाया। सहज आनंद भया मन मोरे गुर आगै आप बिचाया। हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजै शब्द अनाहद गुरमत मनुआ गावे। वड भागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिव लावे। गुरमुख हर लिव लावे रहाउ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल तो वह पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आगानी फिर बहोर न भूख लगावे। कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी बिन कृपा नाम ना पावे। जन नानक को हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा वड भागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वड भागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो। मेरा मन तन हर रंग पिन्ना आवहु संत हो मिल नाम जपाहा। विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुटड़ा।

ही गुण कामण करी हा जीओ मिल संत जना रंग मान रलिया जीओ गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जीओ हर तुठै ढुल ढुल मिलिया।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीउ मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीउ हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीउ हर पायड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लैलाहा मन हस जीउ हर आप उपा

एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना भिख मगाया जियो सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम त्याया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मन

हर हर नाम पर गासिया मेरे गोविंदा, सब दालत दुख लह जाही दियो, हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा, वडभागी नाम समाही दियो, नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा, किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी दियो, मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजो धन कुम लैनी जियो, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रैनी जियो, मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन भुख लगाइया जियो, हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो, हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो, मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा, हर मिलिया मन वादाइया जियो, वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया, हौ तुद विटड़े हो सदवारी जियो, मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा, हर पूंजी राख हमारी जियो, सतगुर विष

हरे आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाएदा मेरे गोविंदा हरे आप खिले बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाएदा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है नंग नंगी जियो आपे जगते उपाएदा मेरे गोविंदा हर दान देवै सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंग है हर चंगी जियो हर आपे भगत कराएदा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा रब रहया नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहया भरपूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखै आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा हर आप बजाए त्यों वाजे जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जियो आपे सरन पुआएदा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध काजे जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामै हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखा हर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो फिर बहुड़ ना भवजल फेरे जियो क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जियो हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर शब्दी पाई हर प्रीत मराओ जियो वड भागी जप नाओ जियो मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो जन नानक पूरेड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जियो मन हर रंग रतड़ा हर रस

प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो। गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो। हौ नाम बिटहु कुर्बान जियो। हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो। हर दसहु संतो जी।

सुसन पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक कहो मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवा क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जां जल थल महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जान जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवर ना दूजा करने जोग ता मिलिए जालह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाई गौड़ी गुआर री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पाव है मिटे जम त्रास नित गाव है हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्य लिहो सवार रहाओ अपने प्रभ स्यों हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाणप सगली त्याग संत

तिस की ओट निमुख माहे होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिसनु जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटाव हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआरवी महला पंजवां गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाउ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन ना आवै हार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआरवी महला पंजवां जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याव रहाओ जिन कीता मूड़ ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पौ सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग।

सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी गुआर दी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लख खरे।

रहाउ हस पवन हस्त असवारी जोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया तामह मन संतोख न पाया तखत सभा मंडन दोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला पर पंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्व सुख एहो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाईऐ कहो नानक वड भागी पाईऐ जा कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाओ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

नाम गुण गाओ। निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिय कतहु जाइए, साध संगत बड़ भागी पाइए। आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली। बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े। आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार। इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह। कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी। अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तने अर्पी सेव करी जय। कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै। कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै। कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारी। कमन सो दाता ले संचारी, खोजत खोजत निज कर पाया। अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह। कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवा गवाररी। रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा। ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन। हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे। रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है।

ते मुक्ते सदा अलिपत जोग अर जुगते दिस है सब मह सब ते रहते पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते संतन की महिमा कमन बखानो अगाध बोध किस मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय तूर संतन की नानक दी जय गौड़ी गुआरी महला पंजवा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संगीत तू मेरी पत तू है मेरा गहना तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

तुम बसना, निरपो नाम जपूं तेरा रसना। तू मेरी नावनिद तू पंडार, रंग रसा तू मन है आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन ताने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरी महला पंजवा, व्यापत हरक सोग विस्थार। व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा। मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी। संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता। व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता। व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा। व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल सिंगार। पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हों फासा। व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत एह जात। सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राए। ताको कहां व्यापै माई, कहो नानक जिन तूर संत पाई। ताके निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओ अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब सियान को ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वास होते।

पाल अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पवो काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपो होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज

भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाऊं, कहो नानक कहो तिस बल जाऊं। राग गौड़ी ग्वारनी महला पंजवां, चौपदे दुपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना। कहो गसाई मिली ऐ के, जो बिबरजत तिस स्यों ने रहाओ। झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना।

बुरा भला कोई ना कही जय छोड़ मान हर चरण गिही जय कहो नानक गुरमंत्र चितार सुख पावह साचे दरबार गौड़ी महला पंजवा जांका मीत साजन है समिया तिस जन कहो कहो का की कमिया जांकी प्रीत गोबिंद स्यो लागी दुख दर्द भ्रमता का भागी रहाव जांको रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जा का कहे दरगाह चले सो किसको नदर ले आवे तले जांका सब किछ ताका होए नानक ताको सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जांकै दुख सुख सम कर जा।

कह सगल निदहन्ना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किना बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिसले पुंचा रहा अनहत बाणी थान निराला तां की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार्य गुरु नानक को दिया गौड़ी महला पंजवा कमन रूप तेरा अरादो कमन योग काया ले साधो कमन गुण जो तुझ लै गावो कमन बोल पार ब्रह्म री जावो रहाओ कमन सो पूजा तेरी करो कमन सो बिद जित पव जल तरो कमन तप जित तपिया होए कमन सो नाम हमने मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा।

प्राण आधार राखो सद चीत रहाउ। रे मन मेरे तू ता कहो सेव, आद पुरख अपरंपर देव, तिसे ऊपर मन कर तू आसा, आद जुगाद जा का परवासा, जा की प्रीत सदा सुख होए, नानक गावे गुर मिल सोए, गौड़ी महला पंजवा, मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना, एकाटेक मेरे मन चीत, जिस किस करना सो हमरा मीत रहाउ। मीत हमारा वे परवाह, गुर कृपा ते मोहे।

अंतर्यामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पये समरथ अंगा।

सो वड्डा जिन राम लिबलाई रहाउ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै छोड़ चले तृष्णा नहीं बुझै कहो नानक एहो तत बीचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा गौड़ी महला पंजवां पूरा मार्ग पूरा इशनान सब के

मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक कर्णहार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल पर गासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे बड़े भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निधनामा साध संग पूर्ण सब कामा

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जा कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसा जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम।

नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान। हर का नाम जन को तारै, सास सास जन नाम सुमारै। कहो नानक जिस पूरा भाग, नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवां, संत प्रसाद हर नाम ते आया। तब ते तावत

याद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरने आयो ऊच अस्थान तब सहजी पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन मह लेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवा जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भागै।

पहले करत जन सोहै ताको माया अगन ना पोहै मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजिया ले।

गुरपुरा पेटिया लिवलाई रहाउ। हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत। आनंद भये गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी पै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के

ज्ञात पूरै गुण काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिस भेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवां साध संग तां की सरनी परो मन तन अपना आगै धरहु अमृत नाम पीवो मेरे भाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ ताज अवमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मनह सुमाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग कहो नानक ता की चरणी लाग गौड़ी महला पंजवा सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा कर दया सतगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फुरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक तेजन सुफल फले गौड़ी महला पंजवां।

प्रभ का नाम। सगल रोग का बिनसे आथाम, सहज सुपाए बोले हर वाणी। आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी, दुख दर्द जम नेड़ ना आवे। कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओह बेला कहो हौ बल जाऊं, जित मेरा मन जपै हर नाऊ। रहाउ सफल मूरत सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओह माथा संत नमस्कारस, चरण पनीत चलह हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द राख मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन

आवन जाना, इन सुख पाया जो प्रभ पाना, अगन सागर महाव्यापै माया, ते सीतल जिन सतगुर पाया।

तुमरी कृपा ते दरगाह थाव। तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे। पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास,

हर हर नाम जपहु नित प्राणी, नाम बिहून त्रिग देह बिगानी रहाउ, नाम बिना नाही मुख भाग, परत बिहून।

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुम ते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समान, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाव, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजे।

आए सर्व कल्याण बसै मन आए भज मन मेरे एको नाम जी तेरे कै आवै काम रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता गुरपूरे का निर्मल मंता छोड़ अपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिकम सागर तेई जन तरे नानक जाको नदर करे गौड़ी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रवतारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ दलभ देह होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग पै परम मटाया जत कत देखो तत रहया समाए नानक दास हर की सरनाए गौड़ी महला पंजवा गुरजी के दर्शन कौ बल जाओ जप जप जीवा सत गुर नाओ पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ चरण कमल हृदय उरतारी मन तन धन गुर प्राण आधारी सफल जन्म होए परवान गुर पार ब्रह्म निकट कर जान संत धूर पाइए बड़ भागी नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी गौड़ी महला पंजवा करै दुख कर्म दिखावै होर राम की दरगाह बांधा चोर राम रमै सोई रामाणा जल थल महियल एक समाणा रहाउ अंतर बेख मुख अमृत सुनावै जमपुर बाता चोटा खावै अनक पड़दे मह कमावै विकार खिन मह प्रगट होवे संसार अंतर साच नाम रस राता नानक तिस किरपाल बिदाता गौड़ी महला पंजवा राम रंग कदे उतर न जाए गुरपूरा जिस दे बुझाए हर रंग राता सो मन साचा लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाओ संतह संग बैस गुण गाए तां का रंग न उतरे जाए बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया आन रंग फीके सब माया गुर रंगे से पहे निहाल कहो नानक गुर पहे हैं दयाल गौड़ी महला पंजवा सिमरत स्वामी किल विकनासे सुख सहज आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिटेओ अंदेसा रहाओ साध संग कस पौ ना परांति गुण गोपाल गाय है दिन राती कर कृपा प्रभ बंधन छोट चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस पीवह जन नीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द भ्रमता का भागा हर धन को वापारी पूरा जिसह

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यो आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुबा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जाने स्वान कहो नानक हम लूण हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मन लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कैर दसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरे हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरता कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी बडियाई गुर कृपाल हर पय सहाई मान मोह खोए गुर भरम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा बिखै राज ते अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तुही वडियाई माया मगन नरक लै जाई।

अंतरजामी गौड़ी महला पंजवा आठ पहर संगी बटवारी कर कृपा प्रभ लय निवारी ऐसा हर रस रमहु सब

उक्त फल पाए। उक्त सियानप इसते कश नाही, कर कृपा नानक गुण गाही। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड भागी हर कीर्तन गाइए। पार ब्रह्म तू देह ता पाइए रहाउ, हर के चरण हृदय उरतार। भव सागर चढ़ उतरह पार, साधु संग करहो सब कोय। सदा कल्याण फिर दुख ना होए, प्रेम भगत भज गुणी निदान। नानक दरगाह पाइए मान, गौड़ी महला पंजवा। जल थल महियल पूर्ण हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तानेक, साचे साहा की मन मह टेक। महा गरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मज्जन कर सूचे। कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाउ, हर के चरण हृदय मह बसे। जन्म जन्म के किल विख नसे, साध संग कीर्तन फल पाया। जम का मार्ग दृष्ट न आया, मन बच क्रम गोविंद आधार। ताते छुट्यो बिख संसार, कर कृपा प्रभ कीनो अपना। नानक जाप जपे हर जपना, गौड़ी महला पंजवा। पौ सरनाई जिन हर जाती, मन तन शीतल चरण हर राति। पै भंजन प्रभ मन ना बसाही, डरपत डरपत जन्म बहुत।

पैन जो जन गीते चरण कमल प्रेम भगति बीते रहाव आन रसादि सह सब चार नाम बिना निफल संसार अंधकूप।

दुष्ट होय, कोट जन्म के किल विख खोय, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रव्या परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान, गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जा की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ। दिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दुए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याऊ करे करतार। अपने दास को रखनहार रहाउ, आद जगाद प्रगट प्रताप। निंदक मुआ उपज वध ताप, तिन मारिया जे रखे न कोय। आगे पाचे मंदी सोए, अपने दास राखे कंठ लाए। शरण नानक हर नाम ते आए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा रहाउ, साची दरगाह बोले कूड़। सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप। अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाए आपे बांधे। दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक शरण परे दरबार। राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवा। जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाउ। अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुध मन जाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुध न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया भउ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाउ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागै, हर संग राता अन दिन जागै, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाव, नेत्र पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन बसेओ हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाव, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिहु मन माने, अगाध बोध हर अग्न अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा दुपदे।

रहाउ। जो जो चितवे दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा। पूज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गह लिहो अंगुरिया, रहाउ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करना में, साजन मीत पिता महतरिया, चरण कमल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया, राग गौड़ी बैरागन महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दई गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो, रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार, जी प्राण सुख दातिया, निमक निमक बलिहार जी, हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्त हो उदर गोपाल, मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल, क्या सुख तेरे सम्मला, कवन विधि विचार, सरल समाई दास हित, ऊचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महारस माहे, सो प्रसन्न भय केसवा, सेजन हर गुण गाहे, मात पिता सुत बंध पो, तू मेरे प्राण आधार, साध संग नानक भजै, बिख तरिया संसार, गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवा।

हाल। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से बड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, बड भागी हर संत मलाही।

नाम आधारी राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो हौ फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नान साध संग मेरे जनन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिल बे कौ प्रीत मन लागी पाई लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा।

भ्रम की कोई तृष्णा रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करहु निवास।

दास गौड़ी महला पंजवां हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाओ सेवा करूं दास दासन की अनक पांत तिस करूं निहुरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मुहे मार्ग दे बताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले वह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई।

सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहा दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतलै सतगुर मुझे बतायो रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही

बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निद नाम निदान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुरु खोई है इव तत्तै तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औज कटै दिन सरै नारी।

सोही साजियान। अनक कोठरी बहुत भात करिया, आप हुआ रखवारा, जैसे महल राखे तैसे रहना, क्या एहु करे बिचारा। जिन किश किया सोई जाने, जिन एह सब बिद साजी, कहो नानक अपरंपर स्वामी, कीमत अपने काजी। गौड़ी महला पंजवा, छोड़ छोड़ रे बिखिया के रसुआ, उर्ज रहो रे बावर गावर, जो किरखै हरियायो पशुआ रहाओ, जो जानह तू अपने काजै, सो संग न चालै तेरे तसुआ, नांगो आयो नांग सदासी, फेर फिरयो अरकाल ग्रसुआ, पेख पेख रे कसुंब की लीला, राच माच तिन्हू लो हसुआ, सीजत डोर दिन से अर रैनी, जी को काज ना कीनो कशुआ, करत करत एव ही बिरधानो, हार्यो उकते तन की नसुआ, ज्यो मोहयो उन मोहनी बाला, उसते कटै नाही रुच चसुआ, जागे ऐसा मोहे गुरह दिखायो, तौ सरल परयो तज गर्भसुआ, मार्ग प्रभ को संत बतायो, दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ। गौड़ी महला पंजवा, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहाओ, अंतर की बिद तुम ही जानी, तुम ही सज्जन सोहेले, सर्व सुखा मैं तुझ ते पाए, मेरे ठाकुर अगह अतोले, बन ना साको तुमरे रंगा, गुण निदान सुख दाते, अगम्य गोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुरते जाते, प्रम पौ काट किए नेह केवल, जब ते हूं मैं मारी, जन्म मरण को चूको सहसा, साध संगत दरसारी, चरण पखार करूं गुर सेवा, बार जाऊं लख बरिया, जेहे प्रसाद एहु पौ जल तरिया, जन नानक प्रिय संग मिरिया। गौड़ी महला पंजवा, तुझ बिन कवन रीजा वै तोही, तेरो रूप सगल देख मोही, रहाओ सुर्ग पयाल मृत भू मंडल, सर्व सुमानो एकै ओही, सेव सेव करत सगल कर जो रह, सर्व मया ठाकुर तेरी दोही, पतत पावन ठाकुर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल सीत लोही, ज्ञान ध्यान नानक वडियाई।

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्श हर राया सोई हुआ जो तिस भाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे भाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पथ प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछ कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछ गौड़ी महला पंजवा हौ ता कह बलिहारी जा कह केवल नाम आधारी रहाओ महिमा ताकी कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परै सो तरिया।

प्रभु कृपाला राज जोगन अवध जो दीसै सब किस जोग मह घाटिया नाम निधान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवां जोग जुगत सुन।

मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरी मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गातमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभराती ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहि है प्रगट प्रभ होआ हन दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन को करहो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पांते कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किस तुम रह हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवा सहज समायु देव मोको सतगुर भये दयाल देव रहाउ काट जेवरी कियो दासरु संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचर्ज गुर है दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मन है प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तया अन भय ठहरायो मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न भये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता कियो टगही जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ता को नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख ओही त्याई रे कोट पतत उधारी खिन मै करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस भावै तिस

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटा प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नु सागर लहर संसार संसार गुरबोहित पार ग्राम नु रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है हम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाओ कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुण इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत भने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान भय भीत चीन राम सेवक भय रहत कीन लख चौरासी जोन फिरह गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइय नीत नीत हर सेवी है
सास सास हर त्याय रहाओ, संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है, जां को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अगनते, नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर, गौड़ी महला पंजवां, रसना जपिए एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम रहाओ, कटिए तेरा अहंग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया, ता की तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निद पाया, सो बहुर न कत ही ताया, हर हर नाम जां को गुर दिया, नानक ता का पहो गया, गौड़ी महला पंजवां, जां को बिसरे राम नाम, ताहू को पीर, साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव, जां को गुरमुख हृदय बुद्ध, ता कै कर तल नव निद सिद्ध, जो जान है हर प्रभ तनी, किस नाही ता कै कमी, करन हार पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया, हर तन जां कै ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै, गौड़ी महला पंजवां, गर्भ बड़ो मूल इतनो, रहन नहीं गहो कितनो रहाओ, बेबरजत बेद संतना, वाहू स्यों रे हितनो, हार जुआर जुआ बिदे, इंद्री वस लै जितनो, हरन परन संपूर्णा, चरण कमल रंग रितनो, नानक उदरे साध संग, किरपा निद मैं दितनो, गौड़ी महला पंजवां, मोहे दासरो ठाकर को, तान प्रभ का खाना रहाओ, ऐसो है रे खसम हमारा, खिन मह साज स्वार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजवां, है कोई ऐसा हूं मैं तोरे, इस मीठी ते एहो मन हो रह रहाओ, अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरे, रैन अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरे, प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरे, कहो नानक किरपा पही, साध संगत निद मोरे, गौड़ी महला पंजवां, चिंता मन करना मई रहाओ, दीन दयाला पार ब्रह्म, जांकै सिमरन सुख पई, अकाल पुरख अगाध बोध, सुंत जसो कोट अग खई, किरपा निद प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लई, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए, जान दिन बिसरे प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए रहाओ, एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए, ग्रह मंदर संपै जो दिसै, ज्यों तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराए, पहरे बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए, निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए, जो होए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए, मुक्त भया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए, रत्न जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बले हरिए रहाओ, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए, जो हुए दयाल सतगुरे अपना, ता एह मत बुद्ध पाइए, मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटे,
सर्व सुखा सुख पाईए। सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आईए। नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सतगुरे अपने की गुर ते पाईए पाल। गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिनसे सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा। राग गौड़ी महला पंजवां।

कारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कर कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस सोचो चितो, तौलो दुखन भरे, जो कृपाल गुर पूरा पेटिया, तौ आनंद सहजे, जेती सियानप कर्म हो किए, केते बंद परे, जो साधु कर मस्तक धरियो, तब हम मुक्त भये, जो लो मेरो मेरो करतो, तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को, तब हम सहज सोए, जो लो पोट उठाई चलियो, तौ लो दान भरे, पोट डार गुरु पूरा मिलिया, तौ नानक निरभय, गौड़ी माला महला पंजवा, भावन त्यागियो री त्यागियो, त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो, सर्ब सुख आनंद मंगल रास, मान गोबिंद आग्यो रहाओ, मान अभमान दोष माने, मस्तक डार गुर पाग्यो, संपत हरख न आपत दुखा, रंग ठाकुर लाग्यो, बास बासरी एक स्वामी, उद्यान दृष्टाग्यो, निरपौ भये संत भ्रम डार्यो, पूर्ण सर्वाग्यो, जो किस करतै कारण कीनो, मन बुरो न लाग्यो, साध संगत प्रसाद संतन कै, सोयो मन जाग्यो, जन नानक ओड़ तुहारी परयो, आयो सरनाग्यो, नाम रंग सहज रस माने, फिर दुख ना लाग्यो, गौड़ी माला महला पंजवा, पाया लाल रतन मन पाया, तन सीतल मन सीतल थिया, सतगुर शब्द समाया रहाओ, लाथी भूख त्रिशन सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ, मन जीतो जग सारी, तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर, डोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मूके, अचरज एक सुनो रे भाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाहे परदा ठाकर जो पेटे हो, तो बिसरी तात पराई, कहो ना जाई एहो अचंभव, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच भये बिगासा, गुर निधान हृदय लै राखिया, गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरनी, सर्ब लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरनी रहाओ, सास्त सिमरत बेद बीचारी, महापुरखन इउं कहिया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख ना किन्हू लहिया, तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, बूजत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां थित पावे, फिर तो पहरे पहरे, अनक बलास करत मन मोहन, पूरन होत ना कामा, जल तो कबहू ना बूजत, सगल बिरथे बिन नामा, हर का नाम जपो मेरे मीता, एह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की धूरा, गौड़ी माला महला पंजवा, मोको एह बिद को समझावे, करता होए जनावे रहाओ, अनजानत किश इन्ह कमानो, जप तप कशु ना साधा, दह दिस लै इहो मन दौरायो, कमन कर्म कर बांधा, मन तन धन भूम का ठाकुर, हौ इसका इहो मेरा, परम मोह कस सूजस नाई, एह पैखर पए पैरा, तब इहो कहां कमावन परिया, जब इहो कछु ना होता, जब एक निरंजन निरंकार प्रभ, सब किस आपे करता, अपने कर्तव्य आपे जाने, जिन इहो रचन रचाया, कहो नानक करनहार है आपे, सतगुर परम चुकाया, गौड़ी माला महला पंजवा, हर बिन अवर क्रिया बिरथे, जप तप संयम कर्म कमाणी,
एह ओरे मूसे रहाउ, वर्त नेम संयम मह रहता, तिनका आड़ ना पाया, आगे चलन और है भाई, मुहा काम ना आया, तीर्थ नाए अर तरनी प्रमता।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला।

नारायण दयो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहा। राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए। जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी बाज महला पंजवा।

सब फिक्किया तन मन फिक्का होय। बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय। अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार। पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार। साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे। औगण सब मटाए कह पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर के

रहियो राम सरनाई गौड़ी महला नौवा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एहन समग्न रहे माया में। कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों। एह विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग। देख तास उठ तावे भुगत मुक्त का कारण स्वामी। मूड़ता ही बिसरावे जन नानक कोटन में को। भजन राम को पावे गौड़ी महला नौवा। साधो एहो मन गहियो ना जाई चंचल तृष्णा संग बस्त है। जाते फिर ना रहाई रहाओ कठन क्रोध घट ही के भीतर। जेहे शुद्ध सब बिसराई

ताई जन नानक हर पये दयाला तौ सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवा साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावै रहाओ दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावै माया मोह महा संकट बन तास्यों रुच उपजावै अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो न लावै नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेह कट राम सुमावै गौड़ी महला नौवा साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाव लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब।

प्राणी। गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बवरा, अहनस औद कटै नहीं जाने, भयो लोभ संग होरा रहाओ। जो तन तै अपनो कर मान्यो, अर सुंदर ग्रह नारी, इनमें कछ तेरो रे नाहिन, देखो सोच बिचारी। रत्न जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन भयो चरणन सियो, बिरथा औद सरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया, निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महल्ला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल भय भंजन, सरन ताहे तुम पार रे रहाओ। वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मोह धर रे, पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देहे बहुर नह पावे, कछु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं, भव सागर कह पार उत्तर रे। राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला, गौड़ी गुआर री। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद, निध सिद्ध निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहया भिखमार, त्रिकुटी छूटी बिमल मजार, गुर की मत जिए आई कार। इन बिद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ। एक सुख मानिया सहज मलाया, निर्मल बाणी भरम चुकाया, लाल पए सूहा रंग माया, नदर पई बिख थाक रहाया, उल्ट पई जीवत मर जागया, शब्द रवे मन हर स्यों लागया, रस संग्रह बिख पर हर त्यागया, पाए बसे जम का पौ भागया, साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्योरा ता हुक्म अपारा, जात रहे पत के आचारा, दृष्ट पई सुख आत्म तारा, तुझ बिन कोए न देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए, गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी राचो हर नाए, सिखिया दीखिया भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज घर जाओ, गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति माहे सुमाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना, नह पंडित नह चतुर सियाना, नह भूलो नह परम पुलाना, कथो न कथनी हुक्म पछाना, नानक गुरमत सहज सुमाना। गौड़ी गुआर री महला पहला, मन कुंचर काया उद्यान, गुरु अंकस सच शब्द निशान, राज द्वार है सोभ सो मान, चतराई न चीनिया जाए, बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ। कर्म है अमृत तस कर ले, नन्ना कार न कोई करे, राख है आप वड्याई दे, नील अनील अग्न एक ठाई, जल निवरी गुरबूज बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा में आखो कैसा, सागर डूंघर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, न डरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने तीने पौन, जिन कहया तिन कहन बखानिया, जिन बूझया तिन सहज पछानिया, देख बीचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहया समाई, निज कर व्याप रहया निज ठाई, पुस्तत करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचै साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआर री महला पहला, ना मन मरै न कार्ज होय, मन वस दूता दुरमत दोय,
मन माने गुर ते एक होए, निर्गुण राम गुण है वास होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहु चित विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम बुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन।

मेल मलाई गुण संग्रह औगण शब्द जलाई गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना पावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावे दोए सो

सहज सुभाय सेवा सुरत एक लिवलाय सुख मांगत दुख आगल होय सगल विकारी हार परोय एक बिना झूठे मुक्त ना होय कर कर करता देखै सोय तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुभाय गुरमति नाम हृदय वसाय साची बाणी हर गुण गाय तन मह साचो गुरमुख पाओ नाम बिना नाही निज ठाओ प्रेम परायण प्रीतम राव नदर करे ता बूझै नाम माया मोह सर्ब जंजाला मनमुख कुचील कुशत बिकराला सतगुर सेवे चूकै जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज करवासै साच समाए जम्मण मरना ठाक रहाए पूरे गुरते एह मत पाए कथनी कथो ना आवै और गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख भाणै तिसै रजाए नानक नीच कह लिवलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चित वास काम क्रोध अहंकार बनास दूजी

0: ओ जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पै रच रह सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ नाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप छाणे
1: साचे शब्द दर निसाणे
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवे न जावे चूके आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसे सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिले उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूजे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूजै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूजे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारे
1: आत्म चीना सो तत बिचारी
0: साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हमता के दास गौड़ी महला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारे रहाओ बाल राजा माया अहंकारी जगन करे बहु पार अफारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत ना पाए अपेवे आप भलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी प्रव नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद पुदारी कृपा धारी भूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका शीस समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहु मद कीट महखासा हर नाक्ष ले नखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारी रक्त बीज काल नेम बिदारी दैत संघार संत निस्तारी आपे सतगुर शब्द बिचारी दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जानिया करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन्मे जय गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावे परम पलानिया एक तिल भूले बहोर पछतानिया कंस केस चंडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखै कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म धीर जहर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाट पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहां सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहां सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी
1: खोड़ शिंगार करे अत प्यारी
0: बिन जगदीश भजे नित खुआरी दर कर महला सेज सुखाली अहनस फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देहे दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लश्कर ने बखवासी पाजे बिन जगदीश झूठे देवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलावो ताज कुल है सिर छत्र बनावो बिन जगदीश कहा सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा होमे ममता गुर शब्द वसारी गुरमत जानिया हृदय मरारी प्रणवत नानक सरण तुमारी गौड़ी महला पहला सेवा एक न जान से अवरे परपंच ब्याद क्या गै कवरे भाई मिले सच सच है सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाए मिले मन धोई राव ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत पर जारै सो उबरै गुर शब्द बीच।

ब्राह्मण हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी तत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मनमुख डोलाए गल जेवरी धंधै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस से बिन पिर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै।

जो है मनमुख को आवत जावत दुख मोह है रहाउ। अपियो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बहस सहज कर लही है। हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत वरोले, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी, मन ते मन मानिया चूकी अहं भरमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई।

मेरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरे सहजे पत पाईए अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाईए नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरी क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूजी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना

माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे, सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै ना जन्मै काल ना खाए, सास्त सिमरत सोध देखो कोए, विण नावै को मुक्त ना होए, जोग चारे नाम उत्तम शब्द बीचार, कल मह गुरमुख उतरस पार, साचा मरै ना आवै जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हिरदय उर धारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विचो होमै जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए, गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई, गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई, जो किछ कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै ठौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बाग ज्यों लाए बह नित ध्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरह सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुरु सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिसते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखान है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान।

माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुनह से तनवंत दिसह जुग माही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हउमै मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा

मनमुख खादे दूजे पाए रहाउ। गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे। मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मलाए। मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावे है सहज सुपाए। बिन गुर साचे परम पलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए। जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई। हौ मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई। सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता, मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता। इन विद कुशल तेरे मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए। हिरदय नाम विचों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए। सतगुर ते कमन कमन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर सोभा पाई। नानक राम नाम वडियाई, गौड़ी महला तीजा। त्रै गुण बखाने भरम ना जाए, बंधन ना टूटे है मुक्त ना पाए। मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरमुख प्राणी भरम गवाए। सहज तुन उपजै।

सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी हौं मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हिरदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हिरदय रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हिरदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाई है गुणी निदान रहाओ मन बैरागी जां शब्द पौ खाए मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए गुर किरपा ते मिले मलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए हर किरपा ते राम गुण गाए त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार तिन सफल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर ना कोए सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दूख सगल मटाई सदा आनंद हर नाम लिव लाई गुर मिले हमको शरीर सुध पई हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिनसे क्रोध खिमा गह लई हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरमुख रतन को बिरला लेवे नानक गुण गावे हर अलख अपीवे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर तेजो मोह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन अन दिन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो किरपा तार सत संगत मिलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर भाम दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय धार नाम मिले है पत पाई है नाम मने है सुख होए सतगुर ते नाम पाई है कर्म मिले है प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टकन तरत असमान ना चलई विच विस्ता पए पचन एहो जग परम भलाया मोह ठगौली पाए जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हौं मैं मैल गवाए शब्द रते से निर्मले चलहे सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मलाए जन नानक शरणागति ज्यों भावे तिवें छडाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक ओंकार सतगुर प्रसाद करहले मन परदेसिया क्यों मिलिया हर माए गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए मन करहला सतगुर पुरख त्या

मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछुड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय कित ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला

है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चल तेरे नाल मन करहला वड भागिया हर एक नदर निहाल आप छड़ाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौ निध नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम भवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वड भागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहु मन मह करत गुमाना तब इहु बावर फिरत बेगाना जब इहु हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुरे अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहु जानस मंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इनह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला कर किरपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर मह दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी कर्ण करामन सब किश एक है आपे बुद्ध विचार विवेक है दूर ना नेरे सब कै संगा सच सलाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा तिसकै हिरदय रविया सोए मन पन शीतल निश्चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ जास जपत पौ अपदा जाए धावत मनुआ आवे ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत एह होमै भागे जास जपत बस आवह पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगाह सिजे जास जपत कोट मिटह अपराध जास जपत हर होवह साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सहज निवास जास जपत एह अग्न ना पोहत जास जपत एहो काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा
जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ताकै आत्मै हुई परगास।

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयू कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पास पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे तां का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निचल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुखदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो अनदिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परै कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटै इस मारी बिन जमते नहीं छुटै इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको पये कृपाल कृपा निद किस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जा की है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवां हर स्यो जुरै ता सबको मीत हर स्यो जुरै ता निश्चल चीत हर स्यो जुरै ना व्यापै काड़ा हर स्यो जुरै ता हुए निस्तारा।

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदरह है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते भिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

जाकै काम ना जो है दूत, जाकै काम तेरा वड गमर, जाकै काम हो वह तू अमर, जाके चाकर को नहीं दान, जाके चाकर को नहीं बान, जाके

भांत जां की दृष्ट होए सदा निहाल मन मेरे कर कां की काल ना को चतर नाही को मूड़ा ना को हीन नाही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस भागा गौड़ी महला पंजवां बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीव है साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन बिस्टा महवास बिन सिमरन पय कूकर काम साकत बेसुआ पूत निनाम बिन सिमरन जैसे सींग सतारा बोलह कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन घर दब की न्याई साकत थान पृष्ठ फराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद ना पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवां गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे ना।

अमृत मेरी बाणी। गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निद। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन

नमस्कार। काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहु नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावै कोट कर्म करतो नरक जावै हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद ज्यो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चालै दयाल पुरख पूर्ण प्रतपालै रहाव बिनसत नाही छोड़ न जाए जह पेखां तह रह आसमाए सुंदर सुगढ़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिलक काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्व सुख भोग पूर्ण पुरख नव तन नित बाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम भगत कौ दीन राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद खोजत फिरे असं

तार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिले मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंदन मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सौ जानिया नानक नाम ना छोड़े सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम फिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहस्सी मुंद मन अमाहो साजन रहस्य दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करे बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरेगी नाह बिना प्रभु वे परवाहे तन नाह बाजो रह ना साकै बिखम रैन कनेरिया नह नींद आवै प्रेम पावै सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा तन मिले मलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ियाड़ी जियो कमन मलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे तां पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली तां फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा तन तां फिर रावे जां तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़ आरे क्यों खूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोए ना पावै हठ निग्रह बेबाणै नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जीऊ

भगत लाहा अन दिनु तिस बाज वखर कोई ना सूजे नाम ले बहु खिन खिनु परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुर पूरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा।

हर के गुण सारे हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाईऐ जो गुर कहे सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाइए हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए धन रैन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द सु

कूड़ मुट्ठी कूड़ियारी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचों हो मैं मारी। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद ना आवै जियो, भावै अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावै, मरियै हावै। बिन फिर क्यों सुख पाईऐ, गुर आगै करो बिनंती। जे गुर पावै ज्यों मिलै तिवें मिलाईऐ। आपे मेल लए सुखदाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, बिचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे। रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिया प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी। किस आग्या जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ ना पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिया जियो। आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रह दिन राती, अन दिन रह लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निध पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सारे सबा

मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जीव डूब मोए बिन पानी डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी हम मैं तात संसारे जो आया सो सब को जाती उभरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम बखाने आप तरह कुल तारे नानक नाम बसे घट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो।

हर पाए, घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाए, नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिरा जियो, जा चाख है चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अनरस साध गुआए, सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए सदा सुख पाए, नाम रहे निवलाए, नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए।

छोड परदेश सदाए दूजे किने सुख ना पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए परम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिके नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुग्ध गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुरचरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए।

उदास तन क्यों धीरे, गुणवंत नाहा दयाल बाला, सर्व गुण भरपूरे, फिर दोष नाही सुख है दाते, हौ विछुड़ी बुरियारे, बिनवंत नानक दया तार हो, कर आप हो नाह प्यारे, हौ माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा, हौ सिर अर्पी तिसमीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा, अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया, खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया, दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा, बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा, मेरा मन आनंद भया जियो, बजी वादाई, कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई, मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया, सब मीत बंद पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया, अनहत वाजे बजे है कर्म है, पिर संग सेज विछाई, बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई, गौड़ी महला पंज।

संत धर्मशाला धर्मशाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे जह साध संत इकत्तर होवे तहां तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासी मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल तारिया तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्स ध्याना मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधै से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहिया अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद नो धन कहिया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी गौड़ी महला पंजवां सलोक पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु दुख हरन दीन सरन श्री तहर चरण कमल अराधी है जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधी है कल मलै दहता शुद्ध करता दिन सरैन अरादु बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया भगत वच्छल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईए ताम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईए सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी करुणा मैं समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू सरन जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारू रोग सोग सब दुख बिन सह जपत नाम मरारी बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कल तारी गुण गाओ मना अचुत अबनासी सब ते ऊच दयाला विसंबर देवन को एक है सर्व करै प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारी सब किसै काल कंटक लोभ मोह नासै जी जा कै प्रभ बसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मिल उदम करेहा मनाए लह हर कंतै मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत सखी वास आया
फिर छोड ना जाई, एह रीत भली भगवंत है। नानक जरा मरण भय नरक निवारे, पनीत करे तिस जंत है। सुन सखिए एह भली बिनंती, एहो मतांत पकाइए। सहज सुभाए अपाद रहत हुए, गीत गोविंद गाइए। कल कलेश मिट है ब्रह्म नास है, मन चिंदिया फल पाइए। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम ते आइए। सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए। चरण प्यासी दर्श बैरागण, देखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना संग, समर्थ पुरख मलाए। नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता, सेवड भागी माए। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग लिया। सुन सखिए मेरी नींद पली, मैं आपनड़ा फिर मिलिया। प्रम खोयो शांत सहज स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया। वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां श्लोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत्र नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित करा। गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल, कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आप है किया कराया, आप है करम जोग। नानक एको रब रहया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओं साध सतगुर नमस्कारन, आद मद अंत निरंकारन। आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन। आपने आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो। आपह सूखम आपह अस्थूला, लखी न जाई नानक लीला। कर कृपा प्रभ।

दास्त मारे, दास दासन के पानी हारे। सच्चा शार होत तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। शाड सयानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई। शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुल्म फूलह कनो, काची दे विकार। हम बुद बंधन परे, नानक नाम छुटार पौड़ी। जज्जा जान हों कछ हुआ, बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ। जो जान हों भगत ज्ञानी, आज्ञा ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जान मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यो फिरता। साध संग

तद्दा तावत तौ मिट संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सोभा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक तेह जन मिली वडाई सलोक नानक नाम नाम जप जपिया अंतर बाहर रंग गुरपुरै अपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी नन्ना नरक परहै ते नाही जाकै मन तन नाम बसाही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मह ना हुए खपते नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो निध निधान हर अमृत पूरे तह बाजे नानक अनहद तूरे सलोक पात राखी गुर पार ब्रह्म तज परपंच मोह बिकार नानक सो अरादी है अंत न पारा वार पौड़ी पप्पा परमित पार न पाया पतत पावन अगम हर राया होत पनीत कोट अपराधू अमृत नाम जप है मिल साधु परपंच त्रोहो मोह मिटनाई जाको राखो आप गुसाई पातशाह सत्तर सिर सो नानक दूसर अवरना को सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतह पही मन जीत नानक गुर ते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ देह कल युग मह पाया फिरया अवसर चरै ना हाथा नाम जप हो तो कटिया फासा फिर फिर आवन जान ना होई एक जप हो जप सोई

सुख संपै बहु भोग रस नानक साध रुआल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा बीरा आपन बुरा मटावे ताहू बुरा निकट नहीं आवे बांधियो आपन हो बंदा दोष देत आगह को अंधा बात कीत सब रही सियानक जिसै जनाब हो सो जाने नानक सलोक पै पंजन अग दुख नास मनह अराध हरे संत संग जेह रिद बसेओ नानक तेना भ्रमे पौड़ी पब्बा परम मटावहो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाए दुत्तर महा बिखम एह माए गुरमुख भ्रम पै मोह मटाया नानक तेहे परम सुख पाया सलोक माया डोलै बहु विधि

मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाही नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जैया यतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाता मन बच क्रम जेहे आप जनाई नानक तेहे मत।

ना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटे तेरी बाकी रण दरग है तो सी जय पाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बिकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते सलोक लालच झूठ बिखे ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाऊ नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवे हर औखद सब घट है पाई गुरपूरे बिन बिद ना बनाई गुरपूरे संयम कर दिया नानक तौ फिर दुख ना थिया सलोक वासुदेव सर्वतर मैं ऊन ना कतहूं ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी ववा वैर ना करिए काहू घट घट अंतर ब्रह्म समाहू वासुदेव जल थल मैं रविया गुर प्रसाद विरले ही गविया वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चिहन सगल है ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता सलोक हौ हौ करत बेहानिया साकत मुग्ध अजान रड़क मोए ज्यो त्रिखावन नानक किरत कमान पौड़ी अड़ाड़ा लाड़ मिटे संग साधु कर्म तर्म तत नाम अराधु रूड़ो जेहे बसे दमाही वा की डाड़ मिटत बिन साही अड़ाड़ करत साकत गावारा जेहे ही है हम बुद बेकारा राड़ा गुरमुख राड़ मटाई निमख माहे नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट गहो उकत सियान पत्याग गुर दीखिया जेहे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा शरण परे अबहारी शास्त्र सिमरत वेद पुकारी सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सास सास हम भूलन हारे तुम समरत अगणत अपारे शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला सलोक खुदी मिटी तब सुख पये मन तन पये अरोग नानक दृष्टि आया उस्तक करने जोग पौड़ी खखा खरा सराहू ताहू जो खिन मैं ऊने सुबर पराहू खरा निमाना होत परानी अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहेब सदा दयारा सलोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परहो हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ इयाना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

उपयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर ना जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुणगाम।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदासत पीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी होमै मैल न जावे हर के नाम समसर कस नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर्थ दे छुटै गर्भ गमान न मन के हुटै सोच कर

अपमान आपस कहो जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन को।

सगल कटाको देव हुदान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानू आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहु जी सदा सगल बाणी मह अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी।

काल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोज।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत बूझै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां

पर लपट रहे हो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सब

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर दर्ब को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा।

जाए। गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर

सलय लड़ लाई थान थन अंतर रहे आसमाई सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावह तिस को सिमरत परम गत पावह जे प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याहि सदा मन अंदर जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहो तिस रसना जेहे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याहिय त्यावन जोग जेहे प्रसाद पाठ पटंबर हंधावह तिसह त्याग कत अवर लुभावह।

मुखता को जस रसन बखान जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावे नानक पात से।

ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पाप को मूल।

प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाउ, आप गवाए सो हर गुण गाओ, प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु

मया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लग है हर नाथ नानक इनके

साधजना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरनै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहूं धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

देवा साधु कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल साध कै संग कलूखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध कै संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट दीठा साध संग भय आग्याकारी साध संग गत भई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जान है जेता सुनह तेता बखियान है साध की उपमा तेहो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखै एकस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल

जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्मज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक।

बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर। नानक

कथिया न जाए अदाख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक।

पुजारी अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट अचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थ वास्ती कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी

आवे प्रभ भावे बिन सास तेरा प्रभ भावे ता हर गुण भाख है प्रभ भावे ता पतत उधार है आप करे आपन विचार है दोहा श्रेया का आप सुहामी खेल बिगसै अंतर जामी।

इसकै हाथ हुए ता सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मह रचै, जे जानत अपने आप बचै, परमे फूला दह दिस धावै।

बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभमान सो नरक पाती होवत सोआन जो जाने मैं जो बनवंत तो होवत भिष्टा का जंत आपस कहो कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे

आज्ञा सुख पावे, हनुमंता हुई कारगर बावे, त्रिण समान कस संग ना जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, किन मह हुए जाए पसमंत, किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे।

फनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, फनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगाह कहो कैसे गवे, आपस कहो जो भला कहावे, तिसह भला।

कछ होए तब इसको सुख नाही कोए। जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई

को उठ धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करन हार इसके हार।

कौतक करे रंग अपार। मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन ना जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी।

नानक जो तिस पावै सोई ठिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जल मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोलह हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिस की कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लाग है दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना

ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ

त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिन लाइय, पुरब लिखे का लिखिया पाइय। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तो तिसह चितार। जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिर है अजान। कौन बस्त आई तिरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ताज अभमान ले हो।

पाई, सब काट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाम, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोय, नाम जपत ता की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवर ना बूझ करत बीचार, करते की मित ना जानै किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बूझया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग रात जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

के जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी मह कल राख है पसम करे लश्कर कोट लाख है जिसका शासन काटते आप तां को राखत दे कर हाथ मानस जतन करत बहु भांत तिसके करतब बिरथे जात मारे ना राखे अवर ना कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करह रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख वडाणी बारंग बार बार प्रभ जपिया ई अमृत इह मन तन तृपिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही।

माने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो हो जस जेह बाद नरात प्रभ अपने जन कीनी दात करह भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने स्यो रह समाए जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पहचान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बसै हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभ

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाऊं अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै।

बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान फलया ना जाइए, नानक ऐसा गुरबद भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आतम पतियानी। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर अपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। इहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावह, तो तन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्व निदान मह हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान। मन पर बोध हो हर कह नाए।

0: नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव। पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास। तित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी।
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा। आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरदेव। यो रतन जन्म का हुए उदहार, हर हर सिमर प्राण अधार। अनक अपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करहु मन।

आप एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहे हो प्रभ व्याप अनक विस्थार एक ते पए एक अराध परासत गए।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अबनासी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

तब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई, जह सर्व कला आपह प्रवीन, तह वेद कतेव कहां को चीन, जब आपन आप आप उरतारै।

मान अपमान अनक प्रकार की यो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दुहु पाख का आप है धनी उनकी शोभा उनहु बनी आप है कौतक करै अनद चोज आप है रस भोगर निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुलै यो बलाव हो त्यो नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दिसतार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपै एक आप विस्थार जान तिस भावै तां सृष्टि।

नानक फल पावहु, हलत पलत दोए लेहु सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम जपो निवलाय, दुख दर्द मन ते भउ जाय, सच वापार करो वापारी, दरगाह निबह खेप तुम्हारी।

दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पहे अमरा।

खाए, नानक तेह जन सोजी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहिया भगवंत, तरन माहे आकाश पायाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल, पांतिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी वैसंतर वाहे, चार कुंट दैदिते समाहे, तिसते भिन्न नहीं को ठाव, गुर प्रसाद नानक सुख पाव, वेद प्राण सिमरत मह देख, ससियर सूर नक्षत्र मैं एक, पाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले, सर्व कला कर खिले खेल, मोल न पाइय गुण है अमोल।

किनै कछ करा, आप भला कर तूत आत्मी की, आपे जानै अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआऊ, जन कै संग चित आवे नाऊ। आप मुक्त मुक्त करे संसार,

अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेंती करो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उधार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संग ले।

ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में।

सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै।

विनसहै सगल कलेश आप तजहु गोबिंद भजहु पाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तो टाहिरै हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवै साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजहु साधु संग परीत नानक दुरमत छुट गई।

नानक संत निर्मल भये, जिन मन वसिया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग भ्रम तो घणो, सदा संघारे नीच, हरख सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाय, जिन किए तिसह न जाननी, चित में

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भजन।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर स्यो बीते भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याय सलोक संत मंडल हर जस कथ बोलह सत सुभाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पवजल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक नाम।

सारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म न सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बसया।

अंत मन मह चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइय नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाइय।

पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बेद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाए मन तन शुद्ध जपत हर नाए सब मह पूर रहे पार ब्रह्म।

बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की भगत करो ताजमान हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्तासे कीर्तन प्रभ रंग कोमल बाणी सब कौ संतोख है पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय नानक।

पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट।

श्लोक आत्मजीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंड पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे।

ही हूं मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटुंब सियो, गुण गो

सभी ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन योग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की शरण सलोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाय पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेश को दृढ़ तिसका हुए उदहार किलबिख काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाय हलत पलत मुख

चौथा सतगुरु पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोई, एक दृष्ट कर देखदा, मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुरु विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याई है,

मेरा मन पाया सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम भूले मनुख दुर्जना। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन रत्ता रंग सियो गुरमुख हर गुणतास। जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू बड़ी है। तुद जे वडहोए सो आखी है तुद जेहा तू है पढ़ी है। तू घट घट एक वरतदा गुरमुख परगड़ी है। तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़ी है। तू करह सो सच्चे होए सी ता कायत करी है।

सतगुरु सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिमें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करह सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुथे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुरु अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाए दे तिन विचों किस्तिया ना कोए सतगुर सबना दा

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावे तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवे गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुज सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरहंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन

गाय कूड़ ठगी गुजी ना रहे मलम्मा पाज लह जाए जिस होवे पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यों लोहा पारस भेटी है मिल संगत

हरि आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस देसो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगट आए वड्डी वडियाई वड्डे की गुरमुख आलाए सलोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वडियाई जो आन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम हर नामे ही त्रिपतावे हर नाम तान हर नाम देवान हर नामो रख करावे जो चेत लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओह वेला ओ सहत न आवे ओह अपना बीजिया आपे खावे नरक भोर मुहे काले खड़िया ज्यों तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे जां हर हर नाम त्यावे हर बातां आख

था भिख माया, ओस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझै, अणहोंदे झगड़े दइये ओस दै गल पाया, ओहो गल परोसी करे बहुतेरी, ओस दा बोलिया किसे ना पाया, ओहो घर घर हंडै ज्यो रन दुहागण, ओस नाल मुँह जोड़े ओस पी लक्षण लाया, गुरमुख होए सो अलिप्तो वरतै, ओस दा पास छड गुर पास बह जाया, जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो, ओन लाहा मूल सब गुआया, पहला आगम निगम नानक आख सुनाए, पूरे गुर का बचन उपर आया, गुर सिखा वडियाई भावे गुर पूरे की, मन मुखा ओह वेला हाथ ना आया पौड़ी, सच सच्चा सब दू वड्डा है, सो लय जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईंदा, सच सच्चा सतगुर इक्के, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंचे दूत कीते वस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाएंदे, तिने अंदर कूड़ फिट फिट मुंह फिक्के।

लालची अटिया मन मुकोह रे गल्ला राती ऊंगै दबिया नवे सोत सब ढिला मन मुखा दै सिर जोरां अमर है नित देव है भला जोरां दा आखिया पुरख कमाम दे से अपवित अमेर खला काम व्यापेक सुध नर से जोरां पुछ चला सतगुर कै आखिया जो चले सो सत पुरख भल भला जोरां पुरख सब आप अपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बणत बनावनी नानक भल भला पौड़ी तू वे परवाह।

सेवड़ भागी जे तुद त्याएं दे जिन सतगुर मिली है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल दे, से कूड़े आर कूड़े च

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चे वख कड़े जजमाले सच्यार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का

सच साहा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ, वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लै, गुण कथ है निरारे सेवक पाए से जन मिले, गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहब अलख है, गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे, तिसदा कदे ना होवे भला, ओस दे आखे कोई ना लगे, नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे, कीता करत्या ओस दा सब गया, नित चुगली करे अणहोंदी पराई, मुंह कढ ना सके।

ना होई, विष खादी तत्काल मर जाए। भाई वेखो न्याओ सच करते का, जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर कियां बातां आख सुनाए। महला चौथा होंदै प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर ढोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मुंह फिके थुक थुक मुहे पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित भंबल भूसे खाही। जिन गुरु गोपिया अपना, से लैंदे ढहां फराही। तिनकी भुख कदे ना उतरै, नित भुखा भुख कुकाही। उना दा आख्या को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सतगुर की वड़ियाई वेख ना सकनी, उना अगे पिछे थाउ नाही। जो सतगुर मारे तिन जाए मिलह, रहंदी खुंदी सब पत गुआही। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर तिन का दर्शन ना करहो, जो दूजे पाए चित लाही। तुर करत आप लिख पाया, तिस नाल केहो चारा नाही। जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावै की वड़ियाई वड़ी है, नित सवाई चढ़ै चढ़ाही। महला चौथा जे होंदै गुरु बह टिकिया, तिस जन की वड़ियाई वड़ी होई। तिस को जगत निमिया सब पैरी पया, जस वरत्या लोई। तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करह, जिसकै मस्तक हाथ धरिया गुर पूरै सो पूरा होई। गुर की वड़ियाई नित चढ़ै सवाई, अपड़ को ना सकोई। जन नानक हर करतै आप बह टिकिया, आपे पैज रखै प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है, अंदर हट ना ले। गुरमुख सौदा जो करे,

हृदय है जिन हर बसिया मन माहे हर दर गहति मुख उज्जले तिनको सब देखण जाहे जिन निरपव नाम त्याया तिनको भव कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको धुर लिखिया आहे ते हर दरगह पै नाई है जिन हर बुठा मन माहे वे आप तरे सब कटंब सियो तिन पिछे सब जगत छडाहे जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम जिवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अरादिया आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लए छडाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर तारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जान दिखा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भावसी।

तेरे भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया

मन वजी वधाई। सलोक महला चौथा। जिन्ना अंदर अमरथल से जान सूलिया, हर जान है से बिरहो। हौ तिन बिटो साध घुम घोलिया, हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन बिटो तल रोलिया। जो सिख गुर कार कमाव है हौ गुलम तिना का गोलिया, हर रंग चलूलै जो रते तिन भिन्नी हर रंग।

क्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमै कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली।

चौथा सतसंगत मह हर पुस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है, उपदेश कर है पर उपकारिया, हर नाम जरड़ाव है हर नाम सुनाव है, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचै, नवखंड जगत नमस्कारिया, तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूज है पूज कराव है, सतगुर को सिरजन हारिया, कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मुंह जम मारिया, तिस अग्गै पिछै ढोई नाही।

मंदे शब्द लगावन हार जन नानक दिन को कृपा पई तिन सेवया सिरजन हार पौड़ी सच सच्चे के जन भगत है सच सच्चा जिनी आराध्या जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच लादया सच साहेब सच जिनी सेवया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सब दू वड्डा है सच सेवन से सच रलादया सच सच्चे नू साभास है सच सच्चा सेव फलादया सलोक महला चौथा मनमुख प्राणी मुगद है नामहीन परमाय बिन गुर मनुआ ना टिकै फिर जूनी पाय हर प्रभ आप दयाल होहि ता सतगुर मिलिया।

आया जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला। गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किस जानदा, जो जिया अंदर वरतै। तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै। सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनतै। तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलतै। सतगुर नु मिले सो हर मिले, नाही किसै परतै। सलोक महला चौथा, एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है। गुरमुख लाइयै चित, क्यों सास ग्रास वसारी है। बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई। एहो जियड़ा हर प्रभ वस, ज्यों भावै त्यों रख तू। जन नानक नाम बखश। महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने। खिन आगै खिन पीछे, सदा बलाइय महल ना आवै। क्यों कर दरगाह सीजै।

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसम्मल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्निया तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने, सलोक महला तीजा जिन गुरु गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाओ, हलत पलत दोवै गए दरगाह नाही थाओ, ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय, सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुरु भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

काम कराई सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुध गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौजदी की वार की धुन उपर।

सानंतर राव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागती साध साध कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी।

नानक सह सह गंठ महला पंजवां वसारेंदे मर गए मर पे ना सकै मूल विमुख होए राम ते ज्यो तस्कर उपर सूल पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अबनासी सुनिया जल फल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया।

हथे पैर भौंदा फिर खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रह जा चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसदा नाव पल्लै ऐसै रहो सहेलिया अगै नाल चलै घर बंद हो सच धर्म का गढ़ थम अहलै ओट लै हो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै श्लोक महला पंजवां जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किश सारिया महला पंजवां सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख यूजन सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने श्लोक महला पंजवां सतगुर पूरै सेवै दुखां का होए नाथ नानक नाम अरादै कारज आवै रात महला पंजवां जित सिमरत संकट छुटै है आनंद मंगल बिचराम नानक जपियै सदा हर निमक ना बिसरो नाम पौड़ी जिनकी शोभा क्या गणी जिनी हर हर लगा साधा सरणी जो पवै तो छुटै बद्दा गुण गावे अबनासी है जोन गर्भ ना दद्दा गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समद्धा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा श्लोक महला पंजवां कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए महला पंजवां बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिय भव सागर संसार बिख सो पार उतरिय हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिय नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है श्लोक महला पंजवां नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित डाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवां पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अग

वाक्य एक जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवां पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सफाए अन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवां जीवन पद निर्वाण।

ज्ञान रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

जह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे दिठा मृत को तिल बेठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है, सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म।

सारी पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुने सो उदरै मित्ता हर जस लिखे लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिख्या गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै मोहल्ला पंजवा प्रेतो की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

तूतर वर हौ पंखी आहे मंद भागी तेरो दर्शन नाहे तू सतगुर हौ नौ थन चेला कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी जब हम एको एक कर जानिया तब लोग काहे दुख मानिया।

आज तब जानोगे जब उगरै गोपाज। कहो कबीर पात हर परवान सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जौ पाइए जोग। बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम। जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई। मुक्ति भेद न गईया काई बिंद राख जो तरिये पाई। खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई। राम नाम बिन किन गत पाई गौड़ी कबीर जी।

पर चाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पाव है काल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारास पीजै।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाओ। पर हर लोभ अर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अहमेव, मिल पाथर की कर ही सेव। रहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के हुए, बामन कह कह जन्म मत खोए रहा। जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद।

गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबह न सोई है, राजा रंक धू मिल रोई है, जो पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखी है तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया, जस जंती मह

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हों मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग

तौ की जय जौ आपन जी जय। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलो है जे आवनहारा रहाऊ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाउ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सहज।

तिनकै सद बलिहारै जाउ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाउ। जेहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

श्री पाठी संच महारस तन भया काठी वाको कहिए सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान बीचारा रहाउ सहज कलालन जो मिले आई आनंद माते अन दिन जाई चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तो अनुभव पाया गौरी कबीर जी मन का सुपहु मन व्यापी मन है मार कमन सिद्ध थापी।

बूज बूजनहार सुभागा रहाउ। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामे होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई। आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै पांद काल सर सांधिया। रहाउ कटी ना कटे टूट नह जाई, सास आपन होए जग को खाई। हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कह छूटिया। गौड़ी कबीर जी

तुझह ले तारू खिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

कवना राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ, काको जरै काहे होए हान, नटवट खेल।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन में

न जाना, जिसका भर्म गया तिन साच पछाना, इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पेओ, एह मन लीन भये सुख देओ, जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार री अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारी, एक नाम कल्प तार तारी।

ओरठपी रे जी न लाज लाज तोहे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोई सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना होई।

बताऊं कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यों मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाऊ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छडाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना।

बुझिया अंगियार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

होइ। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई। फासन की बिद सब को जाने, छूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय बिचारे, सूतक तिन्ह ना होई। गौड़ी झगड़ा एक नबेरो राम,

आप गए और नहूं खो वह, आग लगाए मंदिर में सो वह, अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ल जाने। राग गौड़ी बैरागन कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर भी बपरे कहो क्यों पावे है, कौआ कूकर खाही, मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल कर

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाओ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पाल मीठा अवर ना दूजा पाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी एक है सिद्ध पाई हर बिन परम पलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु।

कहे बद हमही जिसे बजाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन बिद मानक लही है। तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर।

पिंड तह नाही रचनहार तह नाही जोड़नहारू सदा अतीता एह कही है किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए बिनासी का को ठाकुर का

हाव खांड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी ताड़ी लागे त्रिपल पलटी है झूठे हुए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती टूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन पए है पूरे माया डोल ना लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ गजी ना मिनिय तोल ना तुलिय पांचन सेर अढ़ाई जो कर पांचन बेग ना पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस।

नतर रही उरझाई, छोड़ पसार इहां रहो बपुरी, कहो कबीर समझाई गौड़ी। एक जोत एका मिली, किंबा हुए मोहोए, जित घट नाम ना उपजे, फूट मरे जन सोए। सांवल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तो हे रहाओ, साध मिले सिद्ध पाई है।

आय गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

देव गौड़ी अग्न ना दह पवन नहीं मगन कस कर नीर ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे ओ रहाओ ज्यों उद्यान कुसम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगुन अर सुत दारा देखन कौ जो दयो तिन ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुरु।

तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाउ। इस माटी मह पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ। जां तिस भावै ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर भज सारग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नौवां जोन छाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता। तव जठर अगन मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो। अब के छुटके ठौर ना ठायो, कहो कबीर भज सारग पानी। आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संजमो क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी भाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखी विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है बिद निरतिया सो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरक बसेरो पंख को तैसो इहो संसार। राम रस पिया रे जेह रस बिसर गए रस और रहाओ।

कह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उस

पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण हरस नाराम रवि जय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे वाका स्वरूप देख मोही ग्वारन मोको छोड़ ना आऊ ना जाहू रे तो हे चरण मन लागो सारंग धर सो मिले जो बड़ भागो रहाउ बिंद्राबन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तुही सारिंग धर मोहे कबीरा नाहू रे गौड़ी पूर्वी बारवा

साधु परम प्रगट हुए नाचो हो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदौरा रहाओ काम

नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब इहो नंद कहाँ थोरे रहाउ।

निंदक लोर निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जानक वीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पति आरा चेत सुचेत चेत होए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना।

जास गुण गाव है तास बस है मूरी प्राणा न रहाऊ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विख रोग पै बंधन भागी मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पये मन बासन त्याग घटियो अभमान हाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बसियो मन जाके कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एक है एक समानाना। कह कबीर गुर पेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना।

बावन अक्षर लोक त्रै सब कछ इन ही माहे ये अखर खिर जाहिंगे ओए अखर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लख ना कोई लह लहू तो क्या कहूं कहूं ता को पकार बटक बीज में रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार अलह लहंता भेद शै कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत।

ना जाई अगह गह गह गगन रहाई कग्गा घट घट निमसै सोई घट फूटे घट कबह ना होई ता घट माही घाट जो पावा सो घट छाड अब घट कत तावा नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह नाही देखना भाजी है परम स्यान एह चचा रचत चित्र है भारी।

न डर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढै कात्याना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़ो सो गड़ मह पावा।

बसेरा हरदह उर्दह मांज बसेरा अर्दह चाड़ उर्द जो आवा तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रही रतवाई निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरख है निरख मलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत स्यों परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी फफा बिन फूल फल हुई ता

बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान पुरो सौ आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद भूपत पहचानिया।

बिलम आवै मगन पया ते सो सच पावै मम्मा मन स्यों काज है मन साधे सिद्ध होए मन ही मन स्यों कह कबीरा मन सा मिलया ना कोई।

जैया जौ जान तौ दुर्मत हन कर बस काया गाँव रण रूतो भाजै नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं भावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे अर जो तहां प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन समार ना आवे हार।

कर सोधो हो घट परचा की बात नरोधो हो घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राओ खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई खोज बूझ जो करै बिचारा तो भव जल तरत न लावै बारा ससा सो सह सेज सुवारै सोई सही संदेह निवारै अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तबह मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई न्यो न्यो कर

गए केते, खिरत खपत अजहू नह चेते, अब जग जान जो मना रह, जह का बिछरा तह थिर लह, बावन अखर जोरे आन, सक्या ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सुअन पैर है, पंडित लोगहा को व्यवहार, ज्ञान मंत को तत विचार, जा कै जी जैसी बुद्ध होई।

अकट अपार, काल कल्पना कदे ना खाई, आद पुरख मह रह समाई, द्वितीया दोह कर जाने अंग, माया ब्रह्म रमे सब संग, ना ओह बढ़े ना घटता जाए, अकुल निरंजन एक पाए, तृतीया तीने सम कर लियावे, आनंद मूल परम पद पावे, साध संगत उपजे विश्वास, बाहर भीतर सदा परगास, चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

छठ खट चक्कर शहू दिस धाय, बिन परचै नहीं फिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

जुग जुग जीव हो अमर फल खाहो। दसमी दह दिस हुए आनंद, छूटे परम मिले गोविंद। ज्योत स्वरूपी तत् अनूप, अमाल ना माल ना शाह नहीं धूप। एकादशी एक दिस धावे, तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा, दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर, एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो, अचरज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान, अर्द उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरहु ध्यान, कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश, पसरह कला सहज प्रगास। आदि अंत मद हुए रहे आथीर, सुख सागर में।

बार बार हर के गुण गाव, गुरगम भेद सो हर का पाव रहाव। आदत करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंब। अहनिस अखंड सुर ही जाए, तो अनहद बीन सहज महबाई। सोमवार सस अमृत चरै,

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराए बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकल।

नाही, हैन सकसमल तो वह नाही, सो किरत सहारे सो एह ब्रत चढ़े, अन दिन आप आप स्यों लड़े, सुरखी पांचो राखे सबे, तो दूजी दृष्ट ना पैसे कवे, थावर थिर कर राखे सोई, जोत दी वटी घट मह जोई, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तो लो महल न लाभे जान, रमत राम स्यों

जीवों की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेऊ मुक्त भए।

कौ राज दिए जापहीन तापहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

महरम महल न को अटकावे। कहरव दास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बैरागण रविदास जियो। काटे अव कट डूगर।

साध कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

मोसौ को न कह समझाय, जाते आवागमन बिलाय रहाउ। बहु विद धर्म निरूपी है, करता दिसै सब लोए, कवन कर्म ते छूटी है, जेह साजे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म बिचारी है, संका सुन वेद पुराण, संसा सद हिरदय बसै, कौन हिरै अभमान। बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बेबिद बेकार, शुद्ध कवन पर्व होए बो, सोच कुंचर बिद व्यवहार। रब प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार, पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत लेलाट, हुन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक बेचार। अनक जतन निग्रह की

सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी ते धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

तरे जां तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाई आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वसै मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसै देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दौलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचै कल का पाओ जति सती कह राखह पाओ नानक नाम विटो कुरबान अंधी दुनिया साहिब जान रहाओ।

कही है, सर्ब निरंतर रव रहिया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा पहया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन।

तेरा देखिया सगल भवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बीना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता

याद जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिए सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन दोए साखी पास जैसा तू करह तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर कृपा अपने घर आया ता मिल सखियां काज रचाया खेल देख मन आनंद भया सहो वी आहण आया गावो गावो कामणी बिबेक बिचार हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जां सहो मिलिया ता जानिया तिहों लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारी पूर्ण कार्य ना हुई जित कार्य सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाय दुर्मत गत पई कीरत थाय सच पौड़ी साचो मुख नाम सतगुर सेव पाए निज थाम मन चूरे खट दर्शन जान सर्ब ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ अधिक त्यास भेख बहु करे दुख बिख्या सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर तन हिरे दुबदा छोड़ नाम निस्तरै सिफत सलाहन।

जाय नानक अस्थिर नाम रजाय आसा महला पहला एको सरवर कमल अनूप सदा बिगासे परमल रूप उज्जल मोती चूगह हंस सर्व कला जगदीश अंश जो दीसै सो उपजै बिनसै बिन जल सरवर कमल ना दीसै रहाओ बिरला बूजै पावै भेद साखा तीन कह नित बेद नाद बिंद की सुरत समाई सतगुर सेव परम पद पाए मुक्तो रातो रंग रवंतो राजन राज सदा बिकसंतो जिस तू राख है कृपा तार बूढ़त पाहन तार है तार त्रिभवन मह जोत त्रिभवन मह जानिया उल्ट पई घर घर मह आनिया अहनस भगत करे लिबलाई नानक तिन कै लागे पाए आसा महला पहला गुरमत साची हुज्जत दूर बहुत सियाण पलागे धूर लागी मैल मिटे सच नाई गुर प्रसाद रह लिव लाई है हजूर हाजिर अरदास दुख

संग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ताके सद बलिहारे जाओ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन नारी।

एक धरन गगन में ठौर ना पाव है, से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है, गुरपुरे ते गत मित पाई, एहो संसार बेख वत अत भौजल।

गुरमुख निर्मल रह प्यारी, ज्यो जल अंब ऊपर कमल निरारी। बुरा भला कहो किसनु कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

प्रगट जाई, सच निशान है ठाक न पाई। पंडित पढ़े बखान है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखानी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देहे दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। जिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवै। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है करह सोई, आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आस मरास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कलपै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे, गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे, नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रहै समाए, आसा महला पहला, आप करे सच अलख अपार, हौ पापी तू बख्शन हार, तेरा भाणा सब किछ होवै, मन हठ कीचै अंत वगोवै रहाउ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किस लेव हो, जो उपजै सो अलख अपेव हो, ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दिरडाई, सगली सौदी टोटा आवै, नानक राम नाम मन भावै, आसा महला पहला चौपदे, विद्या विचारी तां पर उपकारी, जां पंच रासी तां तीर्थवासी, कुंगरू वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोस्यों आगै रहाउ, आस नरासी तौ सन्यासी, जां जत जोगी तां काया भोगी।

मेरा सहो जागै हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागै हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगै सह भावा।

पहला द्रौपदे तित सरवरड पहले नवासा पानी पावक तिनह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेत समूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हों जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पहला।

इस एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ कर है सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राख है मान जा पत लेख ना पवै ता सब नराफल काम हर के नाम बिना जग धंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंधो अंधा रहा लख खटिय है लख संजिय है खाज है लख आव है लख जाहे जा पत लिख ना पवै ता जी किथे फिर पाहे लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़ है पुराण जा पत लिख ना पवै ता सबे को परवान सच नाम पत उपजै कर्म नाम करतार अहनस हिरदय जी वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को पकड़ पाए।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राव सच्चा नावन ता फीए जा एनस लागे भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबहून खूटस नाहे। आसा घर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवत्या दर्शन कहताई दुख भूख तीरथ किए जोगी जति जुगत मह रहते कर कर भगवे भेख भये।

घर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पेकांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासे थिर ना रहे जैसे भवह उदासे मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल रु

साद आसा कर सीमा महला पहला मन मोती जे गहना होवै पौन होवै सूत तारी खिमा सिंगार कामन।

खाव हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धरी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ।

गुर का शब्द मने मह मुंदरा खिंता खिमा हंडावू जो किश करे भला कर मानू सहज जोग निद पावू बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी परम तंत मह जोगन अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाओ शिव नगरी मह आसन बैसो कल्प त्यागी बादम सिंह शब्द सदा धुन सोह एनस पूरे नादम।

सगली जोत हमारी समय नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावे कर करनी कस पाई है पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाई है बाबा मन मतवारू नाम रस पीवे सहज।

जुए जन्म ना हारे, कहो नानक सुन परथर जोगी, खीवा अमृत धारे, आसा मोहल्ला पहला, खुरासान खसमा ना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, तैं की दर्द न आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते कौ मारे, ता मन रूस न होई रहाओ, सकता सिंह मारे पै बगै,

कोए, गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगै ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआई। सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई,

समाहे सेवड भागी जिन नाम त्याया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहार है जाऊं दर साचे साचे गुण गाव आपे देवे सहज सुपाए नानक कीमत कहन ना जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई श्री वछुन्ने मेल मलाई आपे मेले मेल मलाई अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए विरले कर्म प्राप्त होए ऊंची बाणी ऊंचा होए गुरमुख शब्द बखाने कोए विणनावे दुख दर्द शरीर सतगुर भेटे ता उतरे पीर बिन गुर भेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पियाए सोए गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गत पाए आसा महला तीजा मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर सेवत ही सुख शांत शरीर शब्द तरे जन सहज सुपाए किनकै हम सद लागह पाए जो मन राते हर रंग लाए तिनका जन्म मरण दुख लाथा ते हर दरगहा मिले सुपाए रहाउ शब्द चाखै साचा साध पाए हर का नाम मन वसाए हर प्रभ सदा रहे।

गुर प्रसाद वसै मन आई, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, हत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाए, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हौ मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हर कदोय सम कर जाने गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ करनी कार तुरहु फरमाई बिन शब्द को थाए ना पाई करनी कीर्त नाम वसाई आपे देवे ढिल ना पाई मन मुख परम भुले संसार बिन राशी कूड़ा करे व्यापार बिन राशी वखर पल्ले ना पाई मन मुख भुला जन्म गुआ।

नानक साच समावै सोई आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपाई गुर कै पै साचै साच समाई बिन गुर पूरे भगत ना होए मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए मेरे मन हर जप सदा त्याए सदा आनंद हो।

अवर ना कोय गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरा भाग गुर सेवा होए सो बूझे जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासे अन दिन जागे वेखे सच सोए रहाओ मोह गमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाण।

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जीव आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सिओ चित लाए भगत रते पिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवा काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणे सतगुर मिले सच सूझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ इस जुग में निरपो हर नाम है पाइय गुर विचार बिन नामे जम कै वस है मन मुख अंध गुआर हर कै भाणे जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणे सलाहियै भाणे मन्नै सुख होई हर कै भाणे जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई।

बिहारी हमरे हर धड़ा जे हलत पलत सब सुवारी कालयुग मह धड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए जिसनो कृपा करे तिस सत संग मलाए हमरा हर धड़ा जिन एह धड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावे प्राया सिदर अटकले अपना अहंकार वधावे जैसा बीजे तैसा खावे जन नानक का हर धड़ा धर्म सब सृष्ट जिने आवे आसा महला चौथा हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया।

बैराग सतगुरु पुरख पाया वडभाग दूजे पाए भवह बिख माया भागहीन नहीं सतगुरु पाया अमृत हर रस हर आप पी आया गुरपूरै नानक हर पाया आसा महला चौथा मेरे मन तन प्रेम नाम आधार।

भाग पाए हर निर्जोगा गुण विहून माया मल धारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

ही काई नाम रवया सब सास ग्रासा रहाउ। नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई। नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा। आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवै हर आपे। आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई।

मन सरसा नाम लाहा लै गुरमत बिगसा नाम बिना कुश्ती मोह अंधा सब ने फल कर्म किए दुख धंधा हर हर हर जस जपै वड भागी नानक गुरमत नाम लिव लागी।

जोगी तो तरवाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगे हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोग हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

खिन लागे हम तब लग समारो नाम मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सकू जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुण गावे कब को नाचे पाम पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाच हो हर हर त्याए ऐसे संत मिल है मेरे भाई हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे अन दिन हर निब लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत भले तुद भावे है जिनकी पत पावे है थाए नानक आख नाराजे हर गुण ज्यों आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा आया मन तुराहो हूं मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरो फुरमाया बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया गुर प्रसादी बुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईए अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईए अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईए हम मैं गर्भ है गर्भ आप खुआईए नानक आपे आप खुआईए गुरमत मन परगास सच्चा पाईए राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा सोधन एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं सतगुरु मोको हर नाम बताया हम हर बिन खिन पल रह ना सको रहाउ हमरे सरवण सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों

उपमान, हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान, सावरी महला चौथा, माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई, हम हर बिन खिन पल रह ना सकू, जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ, हमरा मन बैराग बिरकत भयो, हर दर्शन मीत कहताई, जैसे अल कमला बिन रह ना सकै, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई, राख सरन जगदी सुर प्यारे, मोहे शरदा पूर हर गुसाई, जन नानक कै मन आनंद होत है, हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस भौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरी तिन हुए ना आपै, एक सती कहावै।

समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधिया जोत स्वरूप अनाहद वाजिया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रह समाई आसा महला पंजवां निज भगती सी।

वख वख परमावे घर की नायक घर वास ना देवे जतन करूं पुरजाई परेवे रहाव तुरकी भेजी।

भावे मनुख पहचावो। तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

माना कर मस्तक धार राखियो कर अपना क्या जान है एह लोग अजाना रहाव सुहाग हमारो अब हुन सोहयो कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो आंगन मेरा सुबा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान सद कुचियां सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जोह पिरह सिंगारी थिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उन्मुख कर परना।

जानते मन निर्मल हर हर गुण गाए पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ तावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकरे निश्चल साधु पाए सहज धुन गावे मंगल मनुआ अब ता को फुन काल ना खाए करन कारण समरथ हमारी।

परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाव। जे कोई उसका संगी होवे नाले लए सदावे अनहुंदा अजगर भार उठाए।

पंजवा पंच पदे प्रथमे तेरी नीकी जात द्वितीया तेरी मनिए पांत तृतीया तेरा सुंदर थान बिगड़ रूप मन मह अभमान सोहनी स्वरूप सुजान विचक्षण

ना मोआ होए तिस निश्चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे हर हर नाम अवखद मुख पाया। गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ। काची मटकी बिनस बनासा जिस छूटे त्रिकुटी किस निज घर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला तरन पड़े तिस लगे ना काला। प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर का माल नानक गुरमिल भये निहाल। आसा महला पंजवा पुत्री तेरी बिद कर थाटी जान सत कर हुई।

चहो जुगह समानी, रैण पई तब अंत ना जानी। पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी, ब्रह्म ब्रह्म रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। हसा महला पंजवा, हर सेवा मह परम निदान। हर सेवा मुख अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी।

निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ तोट न आवे नखोट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना आसा महला पंजवा जैसे किरसान बोवे किरसानी। काची पाकी बाड परानी जो जन्मे सो जानहु मुआ। गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई।

त्यों कर प्रत पाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवां आनंद बनोद भरे पुर धारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

गुर पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वडियाई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बनावो।

रहाउ तृप्त अगावन साक्य नाय अठसठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानू करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास भई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंधकूप में।

ही ब्योहारा भाग्यामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी आसा महला पंजवा दोपदे पई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाव जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा सरन परे की राखो शर्मा आसा महला पंजवां।

ओ चित कछु ना लागे, चरण कमल सरनाई, संत प्रसाद भये कृपाला, होए आप सहाये, गुण निदान नित गावे नानक, सहसा दुख मटाई, आसा महला पंजवां, औखद खायो हर को नाउ, सुख पाए दुख बिन सिया थाउ, ताप गया बचन गुर पूरे, आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ, जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवां, पांचत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों

संग मेली सुख सहज आनंद सोहेली साध संग गुण गाए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुए हारे सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारे जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

0: कर कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा घर पंजवां महला पंजवां।

साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वडभागे कृपा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर छेवा महला पंजवा जो तुद पावै सो परवाना सुख सहज मन सोई करन कारण समरथ अपारा अवर नाही रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावह मसलत मता सियान भजन की जो तू करह करावह रहाउ अमृत नाम तुम्हारा प्यारी साध संग रस पाया तृप्त अगाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया।

जन्म जन्म की मन धोवै पराई अपना कीता पावै इहा सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच ना साकै काहू बातै आगे ठौर ना पाया रहाऊ।

बाहर कोए अंतर मन मैला दोए ठौरे अपने खोए इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया आगे मुस मुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा वर्मी मारी साप ना मरी नाम ना सुनी डोरा रहाउ माया की किरत छोड़ गवाई भगती सार ना जाने वेद शास्त्र।

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपना हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी। पंच जना ले वसगत राख।

सुनावै कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा तां का जन्म मरण दुख भागै।

पियाया। रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा। बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया। होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया। गुरसिख राखे गुरु गोपाल काड लिए महापव जलते। अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते। छुटिया हलत पलत सुख पाइय सास ग्रास जपो जप रसना। नीत

की कृपा तिसको बिपना को भाखै ओहो सुख ओहा वडियाई। जो प्रभु जी मन पाणी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिलै रंग माणी।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहे ओरी काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बने ओरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख घनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने होरा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया। आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहु विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरा ओले भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले रहाउ हुक्म बूझ रंग रस माणी सतगुर सेवा महानिर्वाणी जिन तू जाता सो गिरस्त उदासी।

शास्त्र भेद पाप पुण विचार, नरक सुर्ग फिर अवतार, गृहस्थ मह चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी कौ जंजार, प्रभ कृपा ते मन वासे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर की

बाट काट ज पीजै, गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरैन हर कीर्तन गाइय, सो जन जम की वाट ना पाइय, आठ पहर जिस विसरह नाही, गत होए नानक तिस लग पा।

सतगुरु अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुरु का सच शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की धूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस भेटे।

हे मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिनस्यो मन का मूर्ख टीठा प्रभु का पाना लागा मीठा। गुरपुरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवां सतगुर अपना सद सदा सम्हारे। गुर के चरण केस संग चारे जागरे मन जागन हारे। बिन हार

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एकै ओही

पंजवां जिसका सब किस तिसका होए तिस जन लेप ना व्यापै कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करै सोई भल।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहो गुण में वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो ना

ना जानी भोर भया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहूरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी रहाओ कर्म है अमृत आनन सारेउ खिसर गयो भूम पर डारेउ साध मोहे लादी अहंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे

पंजवां ठाकर सिंह जाकी बन आई, भोजन पूर्ण रहे अगाई, कछु न थोरा हर भगतन को, खात खर्चत बिलचत देवन को रहाओ, जाका तनी अगम गुसाई।

आनंद ने मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पाया।

सेवा साधु भये कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवां प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

प्रीत सगल उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग भूले।

अर्थ बिहाजी माया संचत संचत थैली कीनी प्रभ उसते डार अवर को दीनी काच गगरिया अंब मझरिया गर्भ

संबाह निकसया फूक ता हुए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अर रानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अर तिया मोहे

है, बाट घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ह ना ही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब खंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवां, आठ पहर निकट कर जाने।

तो जन सगले भवन पतत पुनीत ता की पागरेन जा को भेट्यो हर हर राई ता की गत मित कत

लेहो रलाए, नानक आए पए सरनाए, आसा महला पंजवा, आठ पहर उदक इशनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़े नाही, बहुर बहुर।

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा।

सूख सहज मेरा धन सोहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवा, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ पवे सब तरना, से उबरे जे

वहां पकड़ हम राखा आशा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई, रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्र है मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जाकी सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है, रहाओ जाका दान न खूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जाकी बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जाके पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निर्भव पद पाई है, सास सास सो गुण निद गाई है, दूर ना होई कतहू जाई है, नदर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

बंदन काट सेवक कर राखे अमृत बानी रसना चाखे वड़े भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जा को भया दयाला।

गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहिब कै मन भावै वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु।

तुम संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे।

साहा साह नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह आसा महला पंजवां पूर रहया सब ठाए हमारा खसम सोए एक साहिब सिर सत दूजा नाही कोई ज्यों पावे त्यों राख राखन हारिया तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहारिया रहाउ प्रतपाले प्रभ आप घट घट सारी है जिस मन उठा आप तिस ना वसारी है जो कुछ करे सो आप आपन पाणिया भगतां का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हर का नाम कदे ना झूरी है नानक दर्श प्यास लोचा पूरी है आसा महला पंजवां क्या सो वह नाम वसार गाफल गह लिया कितनी इत दरियाए वंजन वहदिया बोहितड़ा हर चरण मन चढ़ लंगी है आठ पहर गुण गाए साधु संगी है रहाव भोग है भोग अनेक बिन नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना महा बिखम संसार बिरले पेखिया छूटना।

सगल रोग राखन हार अपार राखै अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद कणा नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भए

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवां आवहो मीत इकत्तर होए। रस कास सब पुंचह अमृत नाम हर हर जपह।

कर तो निध हर पाव सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसह सिंगारे नानका तिस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ परता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की से

के फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसम बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाओ ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपनी सद सद बल जाओ गुरु विटो हो वारिया जिस मिल सच सुहाओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे।

सर्व सुख पावं आज्ञा पावं के ना पावं। एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हम मांगो आनल जावो। सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना साको दर्शन खोज खजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत पर ना पावो। ताकी शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो। पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो।

गंदन वहन सुनह उर जावह, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पर तन पर तन परती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच तर्म स्यो रुच नहीं आवै, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभु ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजे अर जादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंद दुर्गंधे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाटे, बहुर बहुर जनमाते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुर मेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते,

आदि कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोहत रंग माण है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ, पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर, जैसा संग बिसियर स्यों है रे।

रहाउ। तिस सेवक कै हो बलिहारी, जो अपने प्रभ भावै तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवै, आसा घर ग्यारवां महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावै बहु बिद। जैसा है ओह तै सारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर। सुखै नाही परवे सारी, साजन संत हमारे मीता। बिन हर हर आनी तारी, साध संग मिल हर गुण गाए। एहो जन्म पदार्थ जीतारी, रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी। कहो हो कमन बिद तरिया रे, कुमन केर अगाह गाखरी। गुर शब्दी पार उतरिया रे, खोजत खोजत खोज बिचारियो। तत नानक एहो जाना रे, सिमरत नाम निदान निर्मोलक। मन मानक पथियाना रे, आसा महला पंजवां धुपदे। गुर प्रसाद मेरा मन वसिया, जो मांगो सो पावो रे। नाम रंग एहो मन त्रिपताना, बहुर न कतहु तामो रे। हमरा ठाकुर सब ते उच्चा, रहण दे।

महा के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंच हो ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बलीरे।

मोहकम फौज हठलीरे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चलीरे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना

पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मनते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे हिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग

भौजल लंघी है सदा हर गुण गाव जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पुर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता सरन राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाए संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ वेद शास्त्र जन

ते आनपा आठ पहर प्रभ जाप मीत सखा सहाये संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ सर्व सुख बद्दी वड्याई जप जीवै नानक नाओ आसा महला पंजवां उदम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई।

किरमे अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्स तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया।

साध सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने से परगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी मिले प्रेम पिरी आसा महला पंजवा।

मोहिना कारण करना तारण धरना एकै एकै सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहिना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राख हो संत संगाहे नाम त्याग हो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो इस बिन को नाही प्रभ सरनी आईए सर्व फल पाईए सगले दुख जाही जीअन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हों।

नेहो नवेला अपने प्रीतम स्यो लाग रह रहाओ जो प्रभ भावे जन्म ना आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे प्रभ संग मलीजे एहो मन दीजे नानक नाम मिले।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ न आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखिया बिखै लागे हर वित चित दुखाही खिन भंग न कै।

निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जिहे कार्ज रह ओला सोई काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रात्या गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन मैदान पाए सब

सखी असावरी महला पंजवा मनसा एक मान हा गुरसियों नेत ध्यान हा दृढ़ संत मंत ज्ञान हा।

तिस पुखान हा नानक सहज समायो रे मना सावरी महला पंजवा हर हर हर गुणी हा जपिए सहज तुनी हा साधु रसन पनी हा छूटन बेद सुनी हा पाइए वड पुनी मेरे मना रहाओ खोज है जन मुनी हा सर्ब का प्रवतनी हा दलाप काल धुनी हा दूख बनासनी हा प्रभ पूर्ण आसनी मेरे मना मानसो सेविय हां

कीमत पाई। सब दुख तेरे सुखर जाई, सब दुख मेटे साचै नाई। कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझै ता सच निहाला। अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखै रखवाला। त्रे भवन सूजै आप गवावै, बाणी बूझै सच सुभावै। शब्द विचारे एक लिव तारा, नानक धन सवार नहारा। आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान। मन मानै सच सुरत बखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ भार। लेख असंख अलेख या

जग ज्ञानी विरला आचारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन को।

वै दुख कोई, सोरो वै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द भै तरना, निरपहु आप निरंतर जोत, बिन नावै सूतक जग शोत, दुर्मत बिन सह क्या कह रोत, जन्म मुए बिन भगत सरोत, मुए को सच रोवह मीत, त्रै गुण रोवह नीता नीत, दुख सुख पर हर सहज सुचीत, तन मन सौंपो कृष्ण परीत, भीतर एक अनेक असंख, कर्म धर्म बहु संख असंख, बिन पै भगती।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुरपूरा गुरमान मन

नदर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचार।

क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज ना जाना परम पुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

मन झूठ अनीते कहा चलो हो मन रहो हो करे गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गात गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाणे निरंकार मह आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाऊं गुर प्रसादी कर्म कमाऊं नामे राता हर गुण गाऊं गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता।

अनरूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रे भवन सोजी होई एहो मन जोगी भोगी तप तापै गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै मन बैरागी होमै त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखै दर कर महली।

मैं ग्रास इकत थाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत भावो धुन होई अहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब याद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा महला पहला तन बिन सह तन काको कही है बिन गुर राम नाम कत लही है राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मलावन हारा रहाऊ कनक कामनी हेत गवारा।

तू आप भलावह नाम विसार, तू आपे राखह कृपा तार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जपह जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देखह, बिन गुर शब्द जन्म के लेखह। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जा की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की।

0: दुख तिस लागै।
1: जो जन राम नाम लिव जागै,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भए हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जानै, दुख मिटै सच शब्द पछानै।

पास एक लख लहन बैठिया लख लहन खड़िया गरी सुहारे खांदिया मानन से जड़िया तिन गल सिलका पाइया टुटन मोत सरिया धन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूतानो फरमाया ले चले पत गवाए जे तिस भावे दे वड़ियाई।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसै हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ को आटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग

बख्शनहार शब्द कमावही। नानक मंगै सच गुरमुख कालिया, मैं तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहाली है। आसा मोहल्ला पहला, क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं घर बन हरियावला सच टिकै घर आए।

उठाने नित नित खरा संभाली है सच सौदा पाई है खोटे नदर ना आवनी ले अगन जलाई है जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई तिन्ना परम ना भेद है हर रसन रसाई हुक्म।

एक आधार तू दर सेवक दरवान दर्द तू जानही भगत तेरी हैरान दर्द गवावही दरगाह नाम हदूर गुरमुख जान सी वेला सच परवान शब्द पछाण सी सत संतोख कर पाओ।

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना भी

वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ताके चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ताके रूप न जाही लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खानी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या तू करे प्राणी जा को नदर करह तू अपनी।

सुन मन मन वसाई तू आपे आए मिलै मेरे भाई अन दिन सच्ची भगत कर सच्चै चित लाई एको नाम त्याए तू सुख पाव है मेरे भाई हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाउ इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे विण सतगुर पाई ना जाए पंडित पढ़ दे जोत की तिन बूझ ना पाए आपै थै सब रखियोन किस कहन ना जाई आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई जी जंत सब तिस दे सबना का सोई मंदा किसनो आखी है जे दूजा हुई इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा आप भवाली दितियां न अंतर लोभ वकारा एक आपे गुरमुख कीतियां बूझन विचारा भगत पियो नानो बख्शियां अंतर भंडारा ज्ञानिया नो सब सच है सच सोझी होई कोय भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वास

बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक हो है सो ले पाई रतन विचारा अंदर खोले दिव दिष्ट देखे मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई चोरै वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई नानक।

नानिवह दूजा भाउ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वासे आवे गुर प्रसादी ठाकिए ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सुवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल।

दे आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपे ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोय जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

एक है बहुविध श्रेष्ठ उपाय हुक्मे कार कराएंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिर कार एक ना बख्श मेल लह एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार एक धुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उत बताए नदर करे जिस अपनी तिस नो भावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाई गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द भी।

कर गए पल्ले किस ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यो लिवलाए नानक जे सुख लोड़ है कामणी हर का नाम मन वसाए हस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाए सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाए अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए मन सदा हरियावला सहजी हर गुण गाए रहाओ मनमुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिन्ना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सच नाम वापार जो इत लाहे लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार आनंद निरावे फिर अपना सच रख है उरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचों आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली फिर रवै हों मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मरार सबे गुनहा बख्शाए लयन मेले मेलन हार नानक आखण आखिया जे सुन धरे प्यार आसा महला तीजा सतगुर ते गुण उपजै जा प्रभ मेलै सोए सहजे नाम त्याई है ज्ञान प्रगट होए।

चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो पला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद।

जलिया जमराज की रू आई माया कै संगल बंद लया खखे खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगे गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कर भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाह तई किया कगे काल सेवक जे काले शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी भीख पविया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं सुनिया छजे चूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहे आ दे दे वेखे हुक्म चलाए।

कराई सब किस जाने। नानक शायर इव कहिया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अयो अंगे सब जग आया काके कंगे काल भया रीरी लल्ली पाप कमाने पर अवगण गुण विसरिया। मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया लेखा देना तेरे सिर रहिया। रहाउ सिदंगाए सिमरह नाही नन्ने ना तुद नाम लया सस्से सीजह अहन समूड़े क्यों छूतह जम पाकड़िया। बब्बे बूजह नाही मूड़े परम भुले तेरा जन्म गया अनहोंदा ना उतरायो पांदा। अवरां का भार तुद लया जजे जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावहगा एक शब्द तू चीनह नाही फिर जूनी आवहगा। तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरां नो ना सखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदे पिछों दे गल चाटड़िया। सस्से संयम गयो मूड़े एक दान तुद कथाई लया साई पुत्र।

रूप पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया कके काम क्रोध परमयो हो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुण है तू बहुत पुकार है विन बूझे तू डूब मुआ तत्ते तामस जले हो मूड़े थत्ते थान पृष्ठ हुआ कग्गे कर कर फिर है तू मूड़े दद्दे दान ना तुद लया पप्पे पार न पवे ही मूड़े पर पंच तू पलच रहया सच्चे आप खुआयो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बे पवजल डुब हो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मह पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद विसरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर का उपदेश सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउ बुरा तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाही पया गग्गै गोविंद चित कर मूड़े गली किने ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मनमुख पढ़े तीता दुख लागे बिन सतगुर मुक्त ना हुई हरारे राम चित कर मूड़े हृदय जिनके रव रहया गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहया तेरा अंत ना जाई।

करी सीजा सुहावी संग पिरकै सात सर अमृत भरी कर दया मया दयाल साची शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन अमाहो मुंद सहज सुनो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है गुण है वस अवगुण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहन सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर बन जा रा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलो सच कर ढोलो प्रभ भावे ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया औ पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री तर आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़ी मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यों भावे त्यो रावे तन मन फिर आगै शब्द सुभागे घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतुराईए भाई मिले मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारी हम नाही लोकाणी हासा महला पहला अनहदो अनहद वाजे रुण चुन कारी राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारी राम अन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया आसन बैसन तिर नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारी तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनू सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभ भाई पंच मिले विचारी काम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हौ मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हौ बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजै दाते तेरी भगत भरे भंडारा।

आद पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आद जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाण अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई।

मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे हुए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवण जावण ठाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शंत घर दूजा।

तू बैराग कर किस दिखावह, हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावह। कर बैराग तू छोड़ पाखंड, सो सहो सब किस जाने, जल थल महियल एको सोई, गुरमुख हुक्म पछाने, जिन हुक्म पछा

साए सब संसादुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजह नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मुए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यों रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यों चाक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संचह भोग हैं दुख की बिरद वधाई नानक बिकम सहेला तरिया जा आवे गुर सरनाई मेरा ठाकुर हो ठाकुर नीका अगम अथाह राम हर पूंजी चाही।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भारती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारत बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

राम निस्तारी, रामो राम नाम जपया, दुख किल विखनास गवाया राम, गुर परचह त्याह।

राम नाम सुनी सिद्ध कार्य सब सोहाए राम रोमे रोम रोम रोमे मैं गुरमुख राम त्याए राम राम नाम त्याए पवे।

राम सते सत गुरमुख जानिया राम सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम मन तन अर्पया बहुत मन सरदया गुर सेवक पाए मलाए।

भी उत्तम हर जपी सत गुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी अरादिया जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल जुगी उत्तम हर जपी है सतगुर पाए जियो हर

भागा हर हर हर गुण गाया जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे हर हर नाम समाया जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया तिन सफल जन्म परवान जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो जिन हर मीठ लगाना ते जन परदाना ते उत्तम हर हर लोग जियो हर नाम वडाई हर नाम सखाई गुर शब्दी हर रस भोग जियो हर रस भोग महा निर्जोग वडभागी हर रस पाया से धन वड्डे सतपुरखा पूरे जिन गुरमत नाम ते आया जन नानक रेण मंगै पग साधु मन चूका सोग वजोग जियो।

मन तन हर गाव है परम सुख पाव है हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ शोभा गुरमुख हुई अंतर बाहर हर प्रभे को दूजा अवर ना कोई हर हर लिवलाई हर नाम सिखाई हर दरगाह पावे मान जियो सत जुग सब संतोख सरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया मन हृदय क्रोध जलाए दियो मन हृदय क्रोध महा बिसलोद निरपता वह लड़ दुख पाया अंतर ममता रोग लगाना हों मैं अहंकार वधाया हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो जुग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाय जियो तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है हत किरिया कर्म कमाए जियो किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया दोए पग टिकै टकाए जियो महा जुद जोद बहुकीने विच हों मैं पचै पचाए दियो दीन दयाल गुर साध मलाया मिल सत गुर मल लह जाए दियो जुग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाय दियो कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए दियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई हर हर नाम खेत जमाया कल युग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया जन नानक गुर पूरा पाया मन हृदय नाम लखाए जियो कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए दियो आसा महला चौथा हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया तुर मस्तक भाग प्राण जियो तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग हर नामे हर गुण गाया मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी हर नामे हर सोहाया ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया मिल सतगुर मनुआ मान जियो हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रदान जियो तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोव है जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख भागा रती चारी गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नाम कंठ धारी सब एक दृष्ट समत कर देखै सब आत्म राम पछाण जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो सत संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर ना कोए जियो अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब में रहया समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया तिस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर। गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहै दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर न कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर न कोई। तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई। हर सब मह रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो।

सब तेरे शब्द समाए दियो। सब शब्द समावे जां तुद पावे, तेरे शब्द वड्याई गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए। शब्द रहया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईए।

मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा। मेरा मन तन शब्द विगासिया, जप अनत तरंगा। मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा। दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी। हों मांगू सरन हर नाम की, हर हर मुख पाया। भगत वच्छल हर बिरद है।

आई। आसा महला चौथा, इन मस्तक तुर हर लिखिया, इन्ना सतगुर मिलिया राम राजी, अज्ञान अंधेरा कट।

मेरा सतगुरु सोथान सोहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल पाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा। जन नानक हर हर होया, हर

सुख सद हुई जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्हा मिलिया हर सोई जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजी तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती।

हर जुग जुग भगते अपाया, पैज रख दाया या राम राजी, हर नाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तरा।

अरे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे, नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे भाग मणि सुहागन मेरे प्यारे, नानक हर पुर तारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चात्रक बूंद जिवें मन

सहज भया, गृहवास आया मंगल गाया, पांच दुष्ट ओए भाग गया, शीतल आघाणे अमृत बाणे, साजन संत बसीठा, कहो नानक हर सियों मन मानिया।

सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचर

हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना सानथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्रभ

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाते दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे आप।

हरदर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता गुरपुरा पाया नाम त्याया जूए जन्म न हारे बिनवंत नानक सरण।

राजी मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजी हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे प्रियो सह

मीठा ज्यों राती जल माछुली त्यों राम रस माते राम राजी गुर पूरै अपदेसिया जीवन गत पाते राम राजी जीवन गत स्वामी अंतर जामी

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अदारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात मीत सबहू ते प्यारा राम राजे सबहू ते प्यारा पुरख नरारा ता की गत नहीं जानी है हर सास ग्रास ना बिसरै कबहू गुर शब्दी रंग माणी है प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख डारा चातरक जाचै बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मानोरथ पूरा राम राजे ताठी पीत परम की भेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए सब निद दीन दयाला आद माद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे

जम पंथ भणीऐ तह साध संग ना डरपीऐ कर कीरत गोविंद गुणीऐ सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर सिउ नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हर प्रीत करीजै इहो मन दीजै हथ लाइए चित।

कहो नानक संत अनंत ठाकुर की हर सियों की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चित व्यास घनी कद दिनियर देखी है। गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजिय। हर प्रीत करीजै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया। हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया। थिर साधु सरनी पड़िय चरनी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दे।

मन हर लाए प्रीत कब दिन यर देखी है निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी कियो डिवै मन ऐसी प्रीत कीजै जैसे तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी फिर अपना पाया रंग लाल बनाया हत मिलियो मित्र चराणी।

मन हर चरण गिहिजै, ऐसी मन प्रीत कीजै। आसा महला पंजवा सलोक, बन बन फिरती खोजती, हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब, हर पाया मन माही। संत जा को खोजह असंख मुनि, अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधह। ज्ञानी जाप जपे, जप ताप संयम क्रिया पूजा। अनक सोधन बंदना, कर गवन बसदा तीर्थ है मज्जन। मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी। सगल तुझह आराधते, दयाल लाल गोबिंद नानक। मिल साध संगत होए गते, कोट बिसन अवतार। शंकर जटा तार, चाह है तुझह दयार। मन तन रुच अपार, अपार अगम गोविंद ठाकुर। सगल पूरक प्रभ धनी, सुर सिध गण गंधर्व त्याव है। जख किनर गुण भनी, कोट इंदर अनेक देवा। जपत स्वामी जय जयकार, अनाथ नाथ दयाल नानक। साध संगत मिल उधार, कोट देवी जाको सेव है। लक्ष्मी अनक पांत, गुप्त प्रगट जाको राध है। पौन पानी दिन सरात, नखियतर ससियर सूर त्याव है। वसुद गगना गावे, सगल खानी सगल बाणी। सदा सदा त्यावे, सिमरत प्राण चतर बेद। खट शास्त्र जा को जपात, पतत पावन भगत वचल। नानक मिलिए संग सात, जेती प्रभु जनाई। रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै। तेती नह जाए गनी, अवगत अगंत अथाह ठाकुर। सगल मंजे बाहरा, सर्ब जाचक एक दाता। नह दूर संगी जाहरा, वस भगत थिया मिले जिया। ताकी उपमा कित गनी, एहो दान मान नानक पाए। शीस साधह धर चरनी, आसा महला पंजवा सलोक। उदम करहो वडभागी हो, सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवे है, दुख दर्द भ्रम जाय। संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई, भेटत साधु संग जमपुर नह जाइए। दुख दर्द ना पौ ब्यापे, नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर, त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध, कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै, नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुरु अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल फल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दै वसिया, मिटे तिसै वसूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै, पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल, दयाल कृपा निदे। मोहे आसर तो चरण, तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उधरन हर हरि। सागर संसार पाव उतार, नाम सिमरत बहुतरि। आद अंत बेअंत खोजह, सुनी उधरन संत संग बिदे। नानक पयंपै चरण जंपै, ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर

आवे अवनासी अवगत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर्बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जाको राम पतार ताकै आनंद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जां कै मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहू ना तामू शरण पावो, करना मैं प्रभ करमया, समर्थ अगत अपार।

कीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल धर्म कर्म अहंग ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक।

गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत संत। इन्नी रह नड़ी है चाम कनतारी, जागह संत जना मेरे राम प्यारी। राम प्यारे सदा जागह, नाम सिमर है अन दिनो, चरण कमल ध्यान हिरदय, प्रभ बिसर नाही एक खिनो। तज मान मोह बिकार मन का, कलमला दुख जारी, बिनवंत नानक सदा जागह, हर दास संत प्यारी। मेरी से जड़ी है आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखगामी, चाव मंगल रस परी, अंग संग लागे दुख भागे, प्राण मन तन सब हरी, मन इच पाई प्रभ त्याई, संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री तार, सगल आनंद रस बनिया। मिल सखियां पुछ है कहो कंत नी जानी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी, गुण गूढ़ गुप्त अपार करते, निगम अंत ना पावहे, भगत पाए ते आए स्वामी, सदा हर गुण गावहे, सगल गुण सुगयान पूरन, अपने प्रभ पाणी, बिनवंत नानक रंग राती, प्रेम सहज समाणी, सुख सोहिलड़े हर गावन लागे, साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे, सुख सहज सरसे हर नाम रहस्य, प्रभ आप कृपा धारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया, शुभ दिवस आए सहज पाए, सगल निद प्रभ पागे, बिनवंत नानक सरण स्वामी, सदा हर जन तागे। हासा महला पंजवा, उठवाज बटाउड़िया, तैं क्या चिर लाया, मोहलत पुन्नड़िया, कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया, करहें पाप अमित्या, तन पसम टेरी जमै हेरी, काल बपड़ै जितया, माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया, नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया, हाथ हो मिर्ग जिवै, पेख रहन चंद्रायन, सुख हो दुख पए, नित पाप कमायन, पापा कमाने छड़ह नाही, लै चले कत गलाविया, हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया, लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन, नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन, मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी, तरण देहला भया खिन मह, खसम चेतना आयु, दुखा सजाई गणत नाही, किया अपना पायु, गुजा कमाना प्रगट होवा, ईत उतह खुआरी, नानक सतगुर बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी, हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी, कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना, आप नाम जपाया, साध संगत आप हुआ, आप जगत तराया।

धर्म करे दूत भय पलायन, धर्म धीरज सहज सुखिए, साध संगत हर भजे, कर अनुग्रहो राख लीने, मोह ममता सब तजे, गह कंठ लाए गुरमलाए, गोविंद जपत अगायण, बिनवंत नानक सिमर स्वामी, सगले आस पुजायण, निध सिद चरण गहे ता केहा काड़ा, सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा, गह पुजा लीने नाम दीने, करतार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापै, हम्यों हर रस चाखिया, साज संगे नाम रंगे,

आयो माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथ है संग देख करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट है दुख कमाते वलवंच कर उदर भर है मूर्ख गावारा सब किश दे रहया।

कूड़ कपट कमाम दड़े जन्म है संसारा संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक ते आया ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किश नाही माया रंग जेते से संग ना जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहन संभाली है हर एक बिन काश अवर नाही भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वड

प्रसाद कमला ब्रह्म पीत कमला ब्रह्म पीत हे तीखन मद विपरीत हे अवद अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलोह प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजाले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जंपै पतत पावन हर दर्श पे

गोवे है, सूरज चढ़ है हजार, एते चानन होंदिया गुरबेन घोर अंधार। महला पहला, नानक गुरु ना चेतनी, मन

भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उज्जड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हूं लोक सबाया। सतगुर मिलया सच पाया जिनी विच्चों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल। गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल धन वर्तन सर्ब जंजाल। नानक मुस्ते ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल। महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर। उड़ उड़ रावा झट पाए।

मन भाऊ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लय नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जर वेस करेंदी आई है को रह ना परिये पाईये सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत

समावह अर्चा पूजा अगर वास बहकार। जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन।

पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया।

कित्थहु उपजे कित संजम एह जाय हमें एहो हुक्म है पय किरत फराह हमें दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कह सुनो जनहो इत संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देह तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै

कूड़ कप्पड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खाप होए खार कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियों

मल उतर तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है।

देखै पत पवै चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया।

होवै गुनहगार ता उमी साधना मारी है जेहा काले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है पढ़िया अते उमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाओ त्रेत रथ जतै का जोर अगे रथवाह द्वापर रथ तपै का सत अगे रथवाह कल युग।

काच रहे सबको सच समावे। ऋग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुखंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया बिंदरा बन मह रंग किया। कल मह वेद अथर बन हुआ नाओ खदाई अल्लोह भया।

वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रिया, सत गुरु है बोहे था विरले किने विचारिया, कर किरपा पार उतारिया, सलोक महला पहला, सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मोच, हुए जे आवह आस कर जाहे नरासे केत, फल फिके फुल बक बके कामना आवह पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत, सब को निमै आप कहो हर को निमै ना कोई, तर तारा जू तोली है।

कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मने हुए प्रवान, ता खसमै का महल पाए सी। खसमै भावे सो करे, मनहु चिंदिया सो फल पाए सी। ता दरगाह पैंदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण कौ कर लावहु, गोबर तरण ना जाई। धोती टिक्का तै जप माली, धान मलेच्छा खाई। अंतर पूजा पढ़ कतेबा, संजम तुरका भाई।

ताग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देके चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

पहला नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का हुई फिक्को फिक्का सदिये फिक्के फिक्की सोए फिक्का दरगाह सटिये मुहे तुका फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए। महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावह उतरै नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसह रंग रूवह चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

तै धारी है, देख कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनु विसारी है। अपना

आप तिस विच जंत उपायिक दिख थाप उथाप किसनो कहिए नानका सब किछ आपे।

गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लाभ हो।

माया फास बंद नहीं कारे, हर मन सुन ना लूके, आपा पद निर्वाण ना चीनिया, इन बिद अपियो ना चूके, कही ना उपजै उपजी जाने, भाव अभाव बिहूणा, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तो सदा सहज लिव लीना, ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तो मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै धूतियां, तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ निबग, वे हर के संत

गया ना बाजी हारी, मुई मेरी माई हो खरा सुखाला, पहरो नहीं दगली लगे ना पाला, रहाऊ

मेरा मन पाया, हम पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दोहा बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी कोठन गन बाडाडू, किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हो

काल आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु व्याकरण तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इं रामह जंपो मेत जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे

रहाव बैठ सिंह घर पान लगावे कीस गलौरे लियावे घर कर मुसरी मंगल गावे कछुआ शंख बजावे वंश को पूत ब्याहन चलिया सोइने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की प्रथमी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिद पावे तन का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सूई शब्द तागा मथ काले पांच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तूई दृष्ट

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीरी नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाड़ कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तुहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, पै सागर कह ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

पै सूता बुझ गई अगन नानक सियो धुआ रव रहया एक अवर नहीं दुआ रहाउ टूटी तंत ना बजै रवाब भूल बिगारे अपना काज कतनी बदनी कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिन ते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपरा।

खंडस अवगन मेरा रहाउ, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन मन

समझावूं। आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाती तोरै मालनी पाती पाती जीओ जिस पाहन को।

डारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना हम

काल पन बीते 20 वर्ष कस तप ना कियो 30 वर्ष कस देव ना पूजा फिर पछताना बिरद भयो मेरी मेरी करते जन्म गयो शायर सोख पुजंग बलियो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत है ले गयो मेरी राखत मुग्द फिरे चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बह जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे धर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर धन पायो अंते चल दिया नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संत हो अन तन कछु ऐ लै ना गयो आई तलब गोपाल राय की माया मंदर छोड़ चलियो आसा काहू दीने पाट पटंबर काहू

सो कृत कर कर लीजै रे मन रहाउ, कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया मुगद कह धन मेरा, जम का दंड मूंड मह लागे किन मह करै निवेरा, हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावै सत

आसा हम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन पावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ रोजा तरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा कट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याऊं बिचारे कलमा अकलह जाने।

पिस्त शरीर के माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना आसा गगन नगर एक बूंद ना बरख है नाद कहां जो समाना पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परमहंस ले।

चराए, कह डिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो तुर लिखे

रावण कर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई। देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती। तेहे रावण कर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई। बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरमत

नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दुलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब क्या

चार चिरायु कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सो मोहर त्याना आसा, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन सुमान साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ, नैन देख पतंग उर्जे पासना देख आग, काल पासना मुग्ध चेत कनक कामन लाग, कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय, आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब पुन रूप न होई, तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई, अब मोहे लाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ, काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना भया है पुराना गया परम सब छूटी।

कबीर जी होके दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरे हीरा बेद पवन मन सहजे रहे आसमाई, सगल जोत इन हीरे बेदी सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। कह कबीर हीरा अस देखियो जग मह रहा समाई। गुप्त हीरा प्रगट भयो जब गुरगम दिया दिखाई। हासा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सोहरे पेय बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर धरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ। कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो। लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और धरियो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ। इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवह राम

रहो रहोरी बहुरिया कुंगट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाओ कुंगट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जग अनत नायो ताना रहाउ जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना तरन आकाश की कर गह बनाई चंद सूरज दोए साथ चलाई पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

तीर्थ लावे किस बैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछु ना होवे ना ही राम अयाना। पूजो राम।

मेंढक नावह, जैसी मेंढक तैसी उए नर, फिर जोनी आवह। मनहु कठोर मरे बनारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्भ है, ता सगली सैन तराई। दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र, तहां

एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग हर फेन बुध बदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी। हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है भवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं। ईबै बीठल ऊबै बीठल बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नामा प्रणवै पूर रहे हो तू सर्वमही। आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी। कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

पाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जाम है तां की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिहि संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाउ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और इक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

आनंद सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी हम योगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपरे जस कीरा सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया धन रहाओ संपत बिपत पटल माया धन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुतरा कैसे नचत है देखै देखै सुनै बोलै दौर्यो फिरत है रहाउ जब कछ पावै तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना

हीरा रविदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुतकारिया ओह कर कर सुनिया हिरदय वसिया पार ब्रह्म भगता मह।

साध दिनहु मोहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते भोए भारथिए रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन धन जड़ेंदी माओ आए सफल से।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजे बंदगी आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

मन पीरिया कंचन मने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां चले चलन हार बचारा ले मनो गा देंदियां शे माह तोड़ंदियां हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे।

आधार, जहाँ की भगत करह जन पूरे, मुन जन सेवह गुर विचार, रहाव राव सस दीपक जाके त्रे भवन, एका जोत मरार, गुरमुख होए सो अहनस निर्मल, मनमुख रहन अंधार, सिद्ध समाद करह नित झगड़ा, दोह लोचन क्या हेरै, अंतर ज्योत शब्द धुन जागै, सतगुर झगर नबेरै, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, साचे महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करहु निस्तारा। राग गुजरी महला तीजा, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना, जित हर प्रीत ना पाए, जित काम हर विसरै, दूजे लगे जाए, ऐसा सत

उपजै अवर विसर सब जाय हर सेती चित गह रह जरा का भौ न होवे जीवन पदवी पाय रहाउ। गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई जे लोचै सब कोई कूड़ै की पाल विचों निकलै ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आगै जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोए जी हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साक अंत होए सखाई हर दिन होर रास कूड़ी है चलदियां नाल ना जाई हर मेरा धन मेरे साथ चले जहां हूं जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा हुआ कहना कछु ना जाई गुजरी।

गुर प्रसादी राम मन वसै तां फल पावे कोई। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत हर तिस कदे ना विसरै। हर हर करहै सदा मन चीत रहाउ हृदय जिन कै कपट।

जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्म राये तिस देश जाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो हउमै मारे, तां हर भेटै सोई, गुजरी महला तीजा, जिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे, हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छा है सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह है सदा सुख होई रहाओ, सतगुर भेटे ता पार सो होवै।

कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दीखिया देवै साच बुझाए, विण पारसै पूज ना हो वई, विण मन परचे अवरां समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओहो मार्ग पाए, नानक विण नदरी किछु ना पाई है, जिस नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी दे वडियाई, अपना शब्द वरताए, गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना कांसी मत उपजे, ना कांसी मत जाए, सतगुर मिले मत उपजे, ता

फिर रह ता भरम बिचों जाय रहाउ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख हो वह नास पंच भू आत्मा वस करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुगद है सोजी किशु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताई एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बुझाए हथ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हिरदय रहे आसमाय नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आय जो तुद भावे सब सच है सच्चे रह समाय गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे भाई जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चा

मुख खाई हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भारहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख साध।

आग को अमृत रस पाईय तृप्त विष्टा खाए मुख गो है अमृत सर सतगुर सतवादी जितना तै कौआ हंस हो है नानक धन तन वड्डे वड भागी

गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देवोह दान हर प्राण जिवाया। हम हो वह लाले गोले गुरसिखा के, जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया। मेरा मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई। मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ। जा हर प्रभ पावै ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया। बड भागी गुर के सिख प्यारी, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया। सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भागहीन पापी जम खाया। आप कृपाल कृपा प्रभ तारी, हरे आपे गुरमुख मिले मलाया।

कथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया होवा वड भागी हर नाम ते

तेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सिउ चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोए मर जावे आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करहो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मलावे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा घर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विचे ग्रिस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाई सो हम करहें जो आप कराई जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिव लाई गुजरी महला पंजवा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे रे मन चितवह उद्दम जा आहार हर जियो परया सैल पत्थर मह जनते उपाय ता कारजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोधे

आवे। हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किल विखनासह पितरी होए उदारू। सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश रहाउ। सतगुरु तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। अमृत

काटी काम क्रोध माया बिख ममता ए व्याध ते हाटी हर जस साध संग मिल गायु गुर प्रसाद पयु मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायु रहाउ जो कछ कियो सोई भल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब थाई आन न कतहु जाता घट घट अंतर सर्ब निरंतर।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे।

तिन ही रख लिया सगल जुगत बने आई। कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहण ना जाई। गुजरी महला पंजवा दो पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारु। वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारु। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्ट को धनी की जय। जन को अंग नरारु रहाऊ साध संग नानक बुद्ध पाई। हर कीर्तन आधारु नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु। मुक्त भयो चमियारु गुजरी महला पंजवा। है नाही को गुजन हारु जान कमन पता। शिव बरंच अर सगल मोन जन गह नास काहे गता। प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद।

पांचवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़त तीसा तिनकी हैरत कश ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साध ते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

तह परम अंधेरा नाही, ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्व प्रत पालक, प्रभ को सदा सलाही, रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही को प्रभ आही, नानक टेक पई करते की, और आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवां, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गाँव निसे अर पूर।

पंजवा आप जस मिट हुए जग कीरत दरगाह बैसन पाईए जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद सेती घर जाइए जाते काल ना बिरथी जाइए आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा ते

मिथ्या पज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आज्ञा टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री धर सरन ता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाव रे चित चरण कमल आराध सर्ब सुख कल्याण पावह मिटे सगल उपाद रहाउ मात पिता सुत मीत भाई किस बिना नहीं कोई ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोई कोट जतन अपाव मिथ्या कस नाया वै काम सरन साधु निर्मला गा

चरण कमल अराध हृदय एक स्यो लिव लाओ। पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप, सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप। गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया, गई शंका टूट दुख अनेरा पै बनासे, पाप गए निखूट। हर हर नाम की मन प्रीत, मिल साध बचन गोविंद त्याए, महा निर्मल रीत रहाओ। जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम, कर अनुग्रह आप राखे भये पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ, गुण अनकर

ला पंजवा अहम बुद्ध बहु सघन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण योग मन तन बांछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातिक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते माध्यासा कूकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं।

पितर पुत्र कलत्तर सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद प्रमते पकार है कतह नाही चोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवां कर चौथा दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री सत

मन चरनार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उधरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परे ओ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरे अष्टपदिया महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केत हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात घर आंगन मेरै ओह पपत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभू छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै।

काम क्रोध अहंकार तदियले, लोभ मोह तिस माया, मन तत अवगत त्याया, गुर प्रसादी पाया, ज्ञान ध्यान सब दात कथियले,

पार सर्व दृष्ट लोचन अभयंतर एकानदर सोत्रे पवन सार पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रवदाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाच है प्रभ नायक दें दे तोट नाही पंडार ऊंदे भांडे कछ ना समावे सिद्ध अमृत पर निहार सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद सिद्ध जाच करह जयकार जैसी प्यास हुए माने अंतर

बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे।

जितना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्श ना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

पाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिल लाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहेत व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लब लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन चाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पाव है अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कहियै अपना प्यार आप लाए आपे गावै आप सुनावै इस मन अंधे को मार्ग पाए।

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनकस नंदन नारद मुन सेव है अन दिन जपत रह बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आई तिनकी पैज सुवारी।

भय त्रास नाश कृपाल गुण निध सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार करनी तर पात राख परमानंद जलत अनेक तरंग मा

बेकार रख धर्म परम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सरबत रमन परम हंस हरीत देत दर्शन श्रवन हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

आई ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ महला तीजा नानक मुक्त द्वार।

आई सतगुर मिले हम मैं गई जोत रही सब आई इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहे आसमाई पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वास अपने कीता गणत प्रभु न पाईए दूजे परमीता सतगुर मिले जीवत मरे बुझ सच समीता शब्दे हम मैं खोई है हर मेल मिलीता।

वासयो मन आए त्रिक अवेहा जीव्या क्या जुग मह पाया आए माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाए हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाए जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वस्या मन आए हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाए नानक सतगुर सो तन सौंपया जे जी मैं रहया समाई।

आए, तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मुई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाय कितै ना पाईऐ। हर कर्म बधाता गुर शब्दी, हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता। वड्डी वडियाई वड्डे की,

आई नानक हुकुम ना जातु खसम का जे रहा सच सुमाई महला तीजा एको निश्चल नाम धन होर धन आवे जाय इस धन को तस्कर जोहे ना सकई ना उचका ले जाय एहो हर धन जीए सेती रव रहिया जीए नाले जाय पूरे गुरते पाई है मनमुख पल्ले ना पाए धन वपारी नानका जिन्ना नाम धन खटिया आई पौड़ी मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा गुर प्रसादी पाई है निश्चल धन धीरा किरपा ते हर मन वसै भेटै गुरसूरा गुणवंती सलाहिया सदा थिर निश्चल हर पूरा श्लोक महला तीजा त्रिग तिन्ना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे दुख हों मैं पाप कमाए मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे तिन बूझ ना काई पाए हलत पलत कोई सुख ना पावे अंत गए पछुताए गुर प्रसादी को नाम त्याए तिस हों मैं विचों जाए नानक जिस पूर्व होवे लिखिया सो गुर चरनी आए पाए महला तीजा मनमुख ऊंदा कौल है ना तिस भगत ना नाम शक्ति अंदर वरतदा कूड़ तिसका है उपाव तिसका अंदर चेतना भिजई मुख फीका आलाव ओए धर्म रलाए ना रलन होना अंदर कूड़ सुआव नानक करता बंत बनाई मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे गुरमुख तरे जप हर नाउ पौड़ी बिन बूझे वड्डा फेर पया फिर आवै जाई सतगुर की सेवा ना कीतिया अंत गया पछताई अपनी कृपा करे गुर पाई है विचों आप गवाई कृष्णा भुख विचों उतरै सुख वसै मन आई सदा सदा सलाही है हिरदै लिवलाई सलोक महला तीजा जे सतगुर सेवे अपना किसनो पूजे सब कोए सबना उपावा सिर उपाऊ है हर नाम प्राप्त होए अंतर सीतल शांत वसै जप हिरदै सदा सुख होए अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वडाई।

है काम क्रोध अहंकारा यह जम की सरकार है इना ऊपर जम का दंड करारा मनमुख जम मग पाईन

पाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विचों जाए। तन मन होवै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए महला तीजा। एहो मन के तड़िया जुग भरमिया, फिर रह न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेल उपाय, जां हर बख्शे ता गुर मिलै, अस्थिर रह समाई।

विरासत होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर योगी, जो तिस भावै सो करे, हर करे सो होगी। हर गुरमुख नाम

कर्म प्राप्त होए महला तीजा। वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागियां वाहो वाहो मुंह कढ़ाई,

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उचा निर्णय। महल भगती घर सरै सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरस है काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास। नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे प्रगास। पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई। तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई। जी जंत सब तेरिया तू रहया समाई। जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई। चिंता छद चिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा आस्था करता जग मोआ आस्था मरे ना जाए। नानक आस्था पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा आसा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो लै जाए। नानक निश्चल को नहीं बाजों हर कै नाए। पौड़ी

कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वत दे जग मह उत्तम कांडी है विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन।

पौड़ी। नित जपिया सास ग्रास नाओ परवदगार दा, जिसनो करे रहम तिस ना वसार दा, आप उपावन हार आपे ही मारदा, सब किस जाने जान बुझ विचार दा, अनक रूप खिन माहे कुदरत धार दा, जिसनो लाए सच तिसे उधार दा, जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा, सदा भग दी बाण है हों तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवां। काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजै अग्न जलाई, जीव दे आनित जापी, नानक साचा नाओ महला पंजवां। सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

तालोक महला पंजवां नदी तरंदड़ी मैंडा खोजना खुंबै मांझ मोहब्बत तेरी।

जिन संग जपिया नाउ तिन संग संग ना कीचई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निचल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुको बोलेटिया हुक्मे भोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर ना खोटिया सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभू।

आप दया तारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप।

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमहु बड़ भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै भुलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकै हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगै बिन ला।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर कत।

आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई।

ठाकुर लिव लागे। जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सभागे। रहाउ टूटे माया के बंधन फाहे, हर राम नाम लिव लागे। हमरा मन मोहयो गुरमोहन, हम बिसम भई मुख लागे। सगली रैन सोई अंधियारी, गुर किंचत कृपा जागे। जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी, मोहे तुम सर अवर ना लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर, कहो मिले कित गली। हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली। रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे, एह चाल बनी है भली। लटुरी मधुरी ठाकुर पाई, ओह सुंदर हर ढोल मिली। एको प्रियो सखियां सब प्रिय की, जो भावे पेर सा भली। नानक गरीब क्या करे बेचारा, हर भावे तित राहे चली। देव गंधारी मेरे मन, मुख हर हर हर बोली है। गुरमुख रंग चलूलै राती, हर प्रेम पीनी चोली है। रहाव हों फिरो दीवानी, आवल बावल तिस कारण हर ढोली है। कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुल गोली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी झोली है। गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देहे टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई। राख प्रभु पावे मार, रहाव लोकन की चतुराई। उपमा ते बै संतर जार, कोई भला कहो पावे बुरा कहो। हम तन दियो है तार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी। तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी। हर जियो राखो हो लाज मरार। देव गंधारी हर गुण गावे, हों तिस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मरारी। रहाव तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी। हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी। ज्यों भावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नक्ति। ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ति। रहाव जिनका हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ति। ज्यों नुगुरा बहुबाता जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ति। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पातै शुक्ति। छका एक देव गंधारी, महला पंजवां कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुर चरणी चित लाई है।

सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हौ आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

ज्यो अपने प्रभ भावो नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे तांस्यों प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सोभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े।

महासुख पायु चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाव आप मेट पये सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही।

किल बिख कोट दोख रोगा प्रवदिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावह ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ धारो देव गंधारी।

आय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल भई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुहि कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उदार।

दयाल दुख भंजन, मेरा सगल अनेतरा गया रहाउ। हम पापी पाखंडी लोभी, हमरा गुण अवगुण सब सहया। कर मस्तक धार साज निवाजे, मुए दुष्ट जो खया। पर उपकारी सर्ब सधारी, सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता, चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा, अनाथ नाथ प्रभ हमारी।

पाए छोड़ न जाई सद ही संगे अन दिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना त्याग न कतहु जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रिय रोम न समसर लाए मंदर भाग सोभ द्वार अनहत रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माणी ग्रह प्रिय तीके सद थाई।

चार बरन मुक्त भये सेव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निध पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवां कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रे हर एक जान एक रे गुरमुख जान रहाउ काहे भ्रमत हो तुम भ्रमहु ना पाई रविया रे रविया सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मझार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावै गो हर जी को द्वार मिल संगत ताज अभमान

कह पखारू हो कर चतुराई, बिस्मन बिस्मे कहन कहात, गण गंधर्व सिद्ध अर साधक, सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक, चतुर वेद उचरत दिन रात।

छुटकी रे मन छुटकी रे, ताकत संग ना छुटकी रे रहाओ। जो काजर भर मंदर राखियो, जो पैसा कालू खीरे, दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे।

साध पगां हे तरुण तीरे राग देव गंधारी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के सम्राट पंथ बिठले हों बल बल जाओ।

अपनी दुर्मत ते ना तरै रहाउ मद माया कै भयो बावरु हर जस नह उचरै कर परपंच जगत को डहकै अपनो उधर भरै स्वान पूछ द्यो होए ना सूदो कहो ना कान धरै कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सरै देव गंधारी महला नवा सब किस जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंधप हर फुन ग्रह की नार रहाव तन ते प्राण हो जब न्यारे तीरत प्रेत पकार आद करी को नह राखै घर ते देत निकार मृग तृष्णा ज्यो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक भज राम नाम नित जहां ते होत उधार देव गंधारी महला नौवां जगत मैं

पोयंगल बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाऊ मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंध परिया फिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिये अर बहु लोग सियाने रहाव तिन मह राव रंक कौ करी राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी।

जाए राम। मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम। हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध कीरे राम। हर बिन चांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए, ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम।

0: एक
1: फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए इनके सब दुख गवाया राम अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए इत जपे पाप गवाते राम पतत पवित्र गुर हर।

हर अमृत हर तरना राम। अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए, जन नानक खिन हर राते राम। बिहागड़ा महला चौथा, हौं बलिया।

गुण गावे हर प्रभ कीरे राम। ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम। सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुरु देख है राम। ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जस हर हर लेख है राम। तिस जन के पग नित पूजिया है मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले सह राम। नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम मने सह राम। धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम त्यावै राम। पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावै राम। वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर

तेरा जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झाख मारन।

एक अराध्या मेरी जिंदड़िए तिना नाही किसै दी किस चड्डा राम। गुर सेवै हर महल पाया मेरी जिंदड़िए चख मारन सब निंदक कंडा राम। जन नानक नाम त्याया मेरी जिंदड़िए तुर मस्तक हर लिख छड्डा राम। लिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ।

सहस सियाणप नह मिला मेरी जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

कियो हर हर नाम अराधे राम कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगहा सुबा पाईए जिनको बधातै तुरहु लिखिया तिन्ना रहन दिन लिव लाईए हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधे जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अराधे कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

दयाल की, अपर अपारा राम गोपाल दयाल गोविंद लालन, मिलहो कंतन माणिया नैन तरसन दर्श परसन, नह नींद रैन विहानिया ज्ञान अंजन नाम बिंजन, पये सगल शिंगारा नानक पयंपै संत जंपै, मेल संत हमारा लाख उलहने मोहे, हर जब लग नह मिले राम, मिलन को करो उपाव किस हमारा नह चले राम, चल चित बित अनित प्रिय बिन कमन विधि ना धीजिय, खान पान सिंगार बिरथे हर कंत बिन क्यों जीजिय, आसा प्यासी रैन दिनियर रह ना सकिय एक तिलै, नानक पयंपै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिले, सेज एक प्रियो संग दर्शना पाइए राम, अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाइए राम, निर्गुण नमाणी अनाथ बिनवै मिलहो प्रभ कृपा दे दे, भ्रम भीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नाम ने दे, ग्रह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए, नानक पयंपै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए, संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम, इच पुन्नी मन शांत तपत बुझाया राम, सफला सो दिनस रैने सोहावी आनंद मंगल रस घना, प्रगटे गोपाल गोविंद लालन कवन रसना गुण भना, भ्रम लोभ मोह विकार थाके मिल सखी मंगल गाया, नानक पयंपै संत जंपै जिन हर हर संजोग मलाया, बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरु पार ब्रह्म पूरे, अन दिन नाम बखाना राम, अमृत बाणी उच्चरा हर जस

दूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम। पतता पनीता होए तिन संग, जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते। नित देहे चढ़ सो आया, रिद सिद्ध नव निद हर जप। जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक बड़ भाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर जी।

कै चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाईए प्रभ त्याईए, जाहे मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, भ्रम भीत हर हर मिल भगे है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जपे है, हर नार सुहागनी सब रंग माणी, रांड ना बैसे ही प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बडभागिया, सुख सहज सोवे है किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी, बिनवंत नानक मन इच पाई, हर मिले पुरख चिराणी, तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा, मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री धर, गोविंद पतत उदारनु, प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तारनु, जो सरण आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरद स्वामी संदा, बिनवंत नानक हर कंत मिलिया, सदा केल करंदा, बिहाग

गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साद संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो मिनवंत नानक तार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम पावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया हर लाभ पाया आप मटाया मिले श्री विचुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारू बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारू सुन बड़ भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइय पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किश कह।

सद मना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचे अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा महला।

तूं बलवंच लूक करहै सब जानै जानी राम। लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम। किरत कमाणे दुख सहो पराणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया। एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी। बीच ना कोई करे किरत घण विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया। तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया। बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया। तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम। पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

कल्याण मैं प्रगट भये, तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय, छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया, नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निध गाया।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाई, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है।

पछताने तार अनग्रहो अपना कर लीना राम पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले रसना अरादे एक स्वामी हर नाम मन तन पीना नानक जिसनो

चार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखन हारा रखसी अपनी कृपा धार महला तीजा।

पाए। गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गात मत शब्दे पाए। नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचों आप गवाए पौड़ी। जिस दै चित वसया मेरा स्वामी, तिसनों क्यों अंदेसा किसै गलै दा लोड़ी है। हर सुखदाता सबना गल्ला का, तिसनों त्याई दया केव निमख घड़ी मुँह मोड़ी है। जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ी है। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़ी है। हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना कै मुहे दिठै। जगत तरिया सब लोड़ी है। श्लोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ। जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए। जिन हर हर मन वसाया, महला तीजा सारस ना जल जाओ। जिन हर का नाउ वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै। हर कै नाई प्यारिया पौड़ी, हर आपे ठाकुर सेवक भगत। हर आपे करे कराए, हर आपे वेखै विगसै आपे। जित पावे तित लाए, हर इक ना मार्ग पाए आपे। हर इक ना उजड़ पाए, हर सच्चा साहिब सचत पावस। कर वेखै चलत सुभाए,

सच वसै अज्ञान अंधेरा जाय। सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज। नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी

जगत उपाया करते दान सबना कौ दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे आपे करे सो थिया। श्लोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवह सद साचा अनदिन सहज प्यार सदा आनंद गावह गुण साचे अर्ध उर्द उर्तार अंतर प्रीतम वसिया तुर कर्म लिखिया करतार।

थैं पर बुझे सब आपे, एक थैं आपे करे इयाणी, इकना अंदर महल बुलाए, जां आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मरदाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाईए नानका, थादे जाहे विकार। मर्दाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी, पी लाए जमकाल, इत मद पीते नानका, बहुते खटी है बेकार। ज्ञान गुड़ सलाह मंडे, पौ मास आहार, नानक एहो भोजन सच है, सच नाम आधार। काया लाहन आप मद, अमृत किसकी धार, सत संगत स्यों मिलाप होए, लिव कटोरी अमृत भरी, पी पी कट है बेकार। पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा, आपे खट दर्शन की बाणी, आपे सेव संकर महेशा, आपे गुरमुख अकथ कहानी, आपे जोगी आपे भोगी, आपे सन्यासी फिरै बिबाणी, आपे नाल गोसत आप उपदेसै, आपे

हर सिउ प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिले है मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया। आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया। आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझै सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

सोच तन होए अज्ञानी अंध कमाए, नानक इथै कमावै सो मिलै, अग्गै पाए जाए महला तीजा।

प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सबको वसै पेखी जोग ना होए। नानक ऐसा विरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी। आपे जंत उपायन आपे आधार

ते तृप्त भय हौ तिन बलिहारे जाऊ। मैं की नदर न आवही बस है हपिया नाल तिखा तिहाया क्यों।

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंडे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिए मुंडे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग सदूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई आओ सपा।

मलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने। तामस बहुत अहंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, कित लग तरै संसारा। गुरमुख ज्ञान रथे जोगे अंतर, चूकै मोह गुबारा।

साचे लग्या ध्यान गुरमुख मन मेरे नाम संभाल सदा निभै चलै तेरे नाल रहाउ गुरमुख जात पत सच सोए गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए गुरमुख जिसनो आप करे सो होए गुरमुख आप वडाई देवै सोए गुरमुख शब्द सच करनी सार गुरमुख नानक परवारै साधार वडहंस महला तीजा रसना हर साध लगी सहज सुभाए मन तृप्तिया हर नाम ते आए सदा सुख साचै शब्द विचारी

देहे शरीर सुख होवै शब्द हर नाय नाम परमल हृदय रहया समाय नानक मस्तक जिस वड भाग।

ज्ञान आए, परमे भूला फिरे संसार, मर जन्म जम करे खुआर, नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी।

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा। हों जाए पुछा अपने सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा। भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चित लाए। हों सब वेस करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे पावा। सो पिर प्यारा मैं नदर ना देखै हों क्यों कर धीरज पावा। जिस कारण हो शिंगार शिंगारी सो पिर रत्ता मेरा अवरा। नानक तन तन तन सुहागण जिन पिर रावयड़ा सच सवरा। हों जाए पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों पिर पायड़ा। प्रभ मेरा मैं ऊपर नदर करी पिर साचै। मैं छोड़ियाड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करहो हर प्रभ का। इत मार्ग भैने मिलिया आपनड़ा प्रभ नदर कर देखै। नानक जोत ज्योति रलिया जो हर प्रभ का मैं दे सनेहा। तिस मन तन अपना देवा नित पक्खा फेरी सेव कमावा। तिस आगै पानी धोवा नित नित सेव करी हर जन की। जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा। नानक मन आस पुजाए।

सो हर हर सदा संभाली, सो हर हर नाम सदा सदा संभाली, जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वडहंस महला पंजवा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नाही किश पारा वारा, कोट कोट कोट लख तावै, एक तिल ताका महल ना पावे, सहावी कौन सोवेला, जित प्रभ मेला रहाव, लाख भगत जाको अराध है, लाख तपीसर तप ही साध है, लाख

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

जाते, जिसह जनाब हो तिनह तुम जाते, सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता, नानक साधु देख मन राता, वडहंस महला पंजवा, अंतर जामी सो प्रभ पूरा, दान दे साधु की तूरा, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला, रहाओ जाल काल महियल रहे आपर पूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे, जिसनो नदर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए, जी जंत सगले प्रत पारे, सरन परे हो नानक हर द्वारे, वडहंस महला पंजवा, तू वड दाता अंतर जामी, सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा, हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, रहाओ तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, चरण कमल हृदय उरतारे,

मेरा अंतर भूख न उतरै अमाली, जे सौ भोजन मैं नीरे, मेरा मन तन प्रेम परम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे, सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

तार संभाली, मैं निर्गुण कौ रख लेता। हों पई उडीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पिर कितै ना लेखा। इह कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जात है जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अन दिन लाहा सच नाम धन भगत भरे भंडारा।

सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चा मेले ता मिले आपे लए मिलाए ज्यों भावे त्यों रखसी आपे करे रजाए। बड़ा हंस महला तीजा मनुआ दह दिस धाम दा ओह कैसे हर गुण गावे इंद्री व्याप रही अधिकाई काम क्रोध नित संतावे। वाहो वाहो सहजे गुण रवीजै राम नाम इस जुग मह दुर्लभ है गुरमत हर रस पीजै रहाओ। शब्द चीन मन निर्मल होवै ता हर के गुण गावे गुरमती आपै आप पछाणै ता निज कर वासा पावै। ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुख दाता मन चिंदिया फल पाओ। हम नीच से उत्तम भए हर की सरनाई पाथर डुबदा काढ़ लिया ताकी वड्याई। बिक से अमृत भए गुरमत बुद्ध पाई अकोह परमल भए अंतर वासना वसाई। मानस जन्म दलंब है जग में खटिया आए पूरा भाग सतगुरु मिले हर नाम त्याए। मनमुख भूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया। मुखों हर हर सब को करे विरले हिरदय वसाया नानक जिनकै हिरदय वसिया मोख मुकत तिन पाया। बड़हंस महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया कूड़ बगाड़ काहे नाइय नाता सो प्रवान सच कमाई। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिते जाए बही है भला कही है सुरत शब्द लिखाई है काया कूड़ बगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मन लागा दुख डेरा ढाया सूख मन में आए वसिया

वारी खसम कढाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे बड़हंस महला पहला करहो दया तेरा नाम बखान सब उपाय आप आपे सर्ब समान सर्बे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझ ही किए राजे किकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरा मन भावहि माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहि एक मूड़।

किनारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे भाई प्यारी सच्चा भाई प्यारी कंत सवारी हर हर स्यो ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साहि सवारी निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहया भरपूरे राम फिर रव रहया भरपूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही भरपूरे नानक कामन सा फिर भावै।

नानक हर की भगत नराली गुरमुख विरलै कीजै गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए धन खेती वापारा हर नाम ध्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौ निध पाई।

पारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुटियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पिया पनेहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रबीजै नानक नाम रते से निर्मल होर हूं मैं मैल परिजै पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई बिख का कीड़ा बिख स्यो लागा बिष्टा माही समाई जो तुर लिखिया सोए कमावे कोई ना मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणे, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है।

कै कोई जिन श्रेष्ठ साजी सो कर वेखै तिस जेवड़ अवर ना कोई मनमुख अंधा तप तप खपै बिन शब्द शांत ना आई नानक बिन नावै सब कोई भुला माया मोहे खोआई एहो जग जलता देख कै भज

सेवा लागे सेवट भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देहे बुझाई राम आपे देहे बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते सेई महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर

हो मन तन काट काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाते देहो सतगुर चरण हम तूरा कोई आन मलावे मेरा।

0: अंत सखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया।
1: जिते पुत कलत्र कोई बेली नाही,
0: तिते हर हर नाम छड़ाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम त्याई। मेरा सतगुर मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुरबिन रहन ना जाई। जिन्नी दर्शन जिन्नी दर्शन, सतगुर पुरख ना पाया राम। तिन निफल जन्म, सब बिरथा गवाया राम। निफल जन्म तिन बिरथा गवाया,
1: ते साकत मोए मर चूरे।
0: कर हुंदे रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिनका दर्शन।

सतगुरु पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करह बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा राम जप हर हर

आप नवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाते पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिनसे हूं मैं पापा जप हर हर जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अनमिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया इन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु हो हर तारु कृपा।

आया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारी हर धारहु हर धारहु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहे तेजन जी राम पाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देहे सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एहे देहे सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुझ चंगा राम चढ़ लंगा जी विखम भोए अंगा राम विखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ बड़ भागी लंघे गुर खेवट शब्द तराए अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकड़ो कड़ावे शब्द पावे अपेओ हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम उपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन तन दुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सबासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जानी आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई बड़ा

हर मिले हर गुण सुख घने, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बड़भागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया।

मन मैगल गुर शब्द वस आया राम। मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती। कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती। हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है। वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम। मिल सतगुर जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा। हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली। हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुभाए। हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी। देह घोड़ी चढ़ हर पाया, राग बड़ा हंस महा।

0: इत मुख तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चला रिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदारने आए भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरे ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बेअन।

धान्य से परधान्य हर से तीरंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा इनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा।

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता।

पुरबकमाया तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदे लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इथे तंदा कूड़ा चार देह आगे सर पर जाना आगे सर पर जाना ज्यो मेहमान काहे गार्ग कीजै जित सेवै दरगाह सुख पाइय नाम तिसै का लीजै आगे हुक्म न

तिस भावै समरत सोथी है, हीलड़ा एहो संसारु जल थल मही अल रव रहिया, साचड़ा सिरजन हारु साचा सिरजन हारु अलख अपारु, ताका अंत न पाया आया तिनका सफल भया है, एक मान जिनी त्याया ताहे ताहे उसारे आपे, हुक्म सवार नहारु जो तिस भावै समरत सोती है, हीलड़ा एहो संसारु नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोऐ लाए प्यारु वाले वे कारण बाबा रोइए, रोवन सगल बेकारु

रेवा रोवै माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रूवै मैल ना धोवै सुपनंतर संसारू ज्यो बाजी गर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरै राखी नानक सहज सुभाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

गई परांती। पेर निर्मायल सदा सुखदाता, नानक शब्द मलाए फिर हों चुनिया भी मिल है। जे सतगुर लाग है साचे पाए, बड़ा हंसमा।

प्रेम समाय, जिन्हें अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता, कूड़ मुठी कूड़े आरे, सुने हो कंत मेहली हो, फिर सेवे हो शब्द विचारे, सब जागे आप।

सहज मिली पिर राखिया उर धारी सदा उर धारी नेहो नाल प्यारी सतगुर ते पिर दिसै माया मोह का कच्चा चोला तित पहन्दै पग खिसै पिर।